और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते हैं कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नायती जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शहरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शहरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बीत जाएगा और 17 बस बांध में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: कौन है?
1: आशिक।
0: इश्क करता हूँ आशिक, मेरा नाम है ऐश करना, मेरी जान मेरा काम है।
1: ऐसे भी हो तुम, वैसे भी

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोंग के बारे में, लोकल जोन की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोन क्या क्या है आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

प्राणों में आखिरी प्राण आखिरी लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी ज्यू जरन का है, हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल, यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही दनहाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को मार्च लाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और ये है अपना

मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

Son eres tú. तो हम चलते हैं यानी कि

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते ही, क्या आपको मालूम है, आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारी यारो, तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है Kalmaik. Is niet zo'n oude film, mensen. Maar het is een hele mooie nummer. Laten we even die ook gaan draaien. Voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

की में होके सवार चली रही। फिल्म के नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है पद्माश्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

सौ साल पहले तो मुझे ये प्यार था, मालूम नहीं है कि सौ साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी निगति हॉन्टेड एंड फिनेस का। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

फिर ये मुलाकात हो ना हो नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम वो कौन थी और ये गीत जो है दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं है किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो हो ना सके परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है मूवी के नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है, फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। निखत इन होंदत एन फीन से अस्तक मैं निगाहें तेरी चेहरे से। परमाश्री मोहम्मद रफी एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए।

ये भी एक मस्त बड़ी जोंग है। फिल्म के नाम है फागुन, 1958 का, was ik nog niet in geboren mensen, maar het is een ontzettend mooie liedje van Padmashree Mohammed Rafi और आशा जी का है। इसमें मधुबाला भारत भूषण इस फिल्म में काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए फॉर गीता जी।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचान

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है, आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावे कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी ताल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, वाह वाह क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों, मित्रों, एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुनाता है, सुनिए।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों, जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे, खबरदार। पास हो गए तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं मित्रों, बहुत करीब होते हैं। वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

साथियों, मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में पढ़ते हैं। आप बड़े ध्यान से

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं संजय आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं। और यही आशा लेकर कि कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे।

उनसे यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई दिया जाता है। शिशु ने जन्म लिया है तो परिवार को बहुत से बधाई दिया जाता है। जो अपने नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फाइन दाखतु कवेंस एंड फेल वर्क प्लसीर। जो अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए यानी कि अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो माँ सरस्वती को आपको नहीं भूलना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर से आए हैं तो उन्हें फन हार्ट वेलकम एंड फाइन वैकेंसी टू गवेंस। ये ऐसा देश है जहां सुंदरता जो देखने के लिए दुनिया से हर एक प्रांत से लोग यहां आते हैं। सिर्फ मशहूर है म्यूजियम से जहां कुंस एंड कल्चर के लिए लोग यहां तक आते हैं, पर यहां देखने के लिए काफी चीजें हैं, काफी जगहें हैं। और ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में भी मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार और कौन कौन दिन से और मंदिरों को लगाया जाता है, हालांकि अलग अलग शहरों में, पर फिर भी रोटरडम, डेन हाग, अलमेर, आर्नहेम, आम्स्टरडम, फ्लारनिंग, क्रिम्पन ऑन द एसल, इसी प्रकार से अन्य अन्य स्थानों पे आप गूगल महाराज से संपर्क करें। अगर मंदिर का दर्शन करना है, भगवान को दर्शन करना है, तो आपके लिए हॉलैंड में भी मंदिर लगाया जाता है। देखा जाए कि डेन हाग में खासलान 74 से जो देव मंदिर लगाया जाता है, जो 2 बजे से 5 बजे तक हर रविवार को, डेन हाग में श्री राधे कृष्ण मंदिर जो हर मंगलवार को 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है। इसी तरह से सुतमेर में मंगलवार को 6 बजे से हल्फ नहीं खतक रात्रि का कार्यक्रम, और खास करके अल होखते दाख को मंदिर लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो अलमेर उस तरफ रहते हैं तो शायद आप कभी नहीं गए होंगे, तो गोल्डन टेंपल यानी कि विष्णु मंदिर जो अलमेर शहर अलमेर बैत में है, वो 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है हर रविवार को। रोटरडम में भी राम मंदिर, इसी तरह से हॉलैंड में मंदिर का कमताई नहीं है। सुनो लो, हम पहला भजन की ओर बढ़ेंगे।

जिनके हृदय श्री राम बसे, ये गीत जो मुकेश जी के आवाज में हम सब सुने और नीहतीन ससन सैफ अंतक में उन्होंने इस गीत को यानी ये भजन को गाए है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।

कि अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करे, क्योंकि ये अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता भला भांति जानते हैं।

जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा।

का एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और मन में ये रखे कि अगर मैं जीत गया तो प्रभु मेरे, और अगर मैं हार गया तो मैं प्रभु का।

हार जीत का संदेश कि अगर मैं हार गया तो, और अगर मैं जीत गया तो। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

गलत हूँ, वह राह दिखाओ, लेकिन जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरा साथ निभाओ।

के अंतर्गत कहा जाता है कि अनंत प्रेम के मोती राधा, फूलों का खुशबू है राधा, नदियों का धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा।

कृष्ण प्रेम में तपती राधा, श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा, महारास की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा।

वंशीवट की छाया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा, मोहन की मन मित है राधा। सूरज की किरणों सी राधा, आधी कृष्ण आधी राधा, गोविंद का आधार है राधा।

स्वस्ती मेहुल के आवाज में हम ये सुंदर सा भजन को सुने। कहते हैं कि कन कन में कृष्णा बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। सुनवाना सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। और ये कहना चाहूंगा कि श्रीमान खेमराज जी ने एक अच्छा संदेश को भेजे हैं। Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaak, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen. Sriman Khemraj ji ne ye sandesh ko bheje, een schrijver, filosoof, jo dharm ke bare mein bhi kafi likhte padte hain.

जय जय श्री राधे। पुराणों में राधा नाम की महिमा का बखान बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक महामंत्र कहा गया है।

इस नाम का जप यदि पूर्ण भक्ति भाव से करे तो स्वयं भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन होकर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।

कहा जाता है कि राधा नाम के जप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है।

पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि श्री राधा रानी जी का चरणों के रज को पाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ललायत रहते हैं।

ये सुंदर सा भजन राधा रानी के अंतर्गत काफी संदेश इस भजन में जो रखा गया गोपाल कृष्ण तिवारी के लिखे गए ये सुंदर सा भजन और अपना आवास दिए है गौरांगी अरोरा जी, नंद रानी गोपी जी और नंद किशोर निमई जी।

सच्चे शांति। सच्चे शांति वहां है जहां इच्छाओं का अंत होता है। ईश्वर जी ने ये सुंदर सा संदेश भेजे है। ईश्वर जी आपको बहुत सा धन्यवाद। और दूसरा संदेश आपका मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसे मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें ये सिखाया गया था बचपन में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम के प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। ईश्वर जी के ओर से ये सुंदर सा संदेश। अगर आप ये संदेश में कुछ भी ध्यान देते हो तो जरूर आज एक ऐसा दिन बनाइए, ऐसा वृक्ष को और बोइए जिसे आपके लिए आगे में जाकर मीठा फल को प्राप्त कराए।

रहे और मस्त रहे। एक शुभ दिवस प्रस्तुत है, हम कार्यक्रम का रूप कुछ बदल देते हैं और आपके साथ अभी जुड़े रहेंगे।

सुनालो मैं हूँ आपका सेवक संजय। और कुछ समय तक मैं आपके साथ व्यतीत रहेंगे। कुछ पुराने गाने और कुछ नए गाने के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जो दुनिया के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा आप सुन सकते हैं। हमारी हिंदुस्तानी की आवाज़

कहते भी है कि जिसका उदय होना निश्रित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है।

आज एक ऐसा दिन बनाइए कि कोई आपकी वजह से, कोई आपकी वजह से मुस्कुराए, ऐसा दिन जिंदगी में रोज आए।

ये किनारा ही के खोज में हम सभी लगे हुए हैं, पर किनारा कैसे हम पहुंचेंगे? पहले तो हम नाव में दोनों पांव अपने रखे, क्योंकि हम सभी भगवान को पाना चाहते हो, पर पकड़े हुए अभिमान से लाचार है। और ये भी संदेश प्रदीप जी ने भेजे है उत्तम नगर से। प्रदीप जी के ये संदेश है, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।

हरदीप जी भी एक और संदेश को और भेजे हैं, जिसमें लिखा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। जैसे कहा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत ये है कि मन को प्रसन्न रखने सब दुख दूर हो जाएगा।

आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, जिस पर सुनील जी भी ये संदेश भी हमारे लिए भेज दिया कि मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी।

सुनाओ लो, इस पर ईश्वर जी भी हमारे लिए एक संदेश भेजा। और भाई ईश्वर आपके संदेश कोशिश करेंगे रखने के लिए। संदेश जो ऐसा है कि सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, कुछ चीजें मुस्कुराते हुए छोड़ देना चाहिए। यह संदेश जो ईश्वर जी हमारे लिए भेजे।

और सुनने वालों, भाई ईश्वर जी का दूसरा संदेश ये है सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

बिल्कुल सच कहे भाई ईश्वर ने। संदेश जो कि सत्य की भूख सबको है, हम सभी सच्चाई सुनने को इच्छा करते हैं। और भाई ईश्वर कहते हैं कि सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

कि जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाता है।

सुनने वालों, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बहुत जरूरी है कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी रखे, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है।

आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और संदेश जो ईश्वर जी के ओर से जो भारत मोहन गार्डन से जुड़े हुए और हमारे पास संदेश को भेजते रहते हैं, तो ईश्वर जी के ओर से एक और संदेश है, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, बस सही साबित होने में वक्त लग जाते हैं।

अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे इंसान अच्छे समय ला सकता है, लेकिन अच्छे सामान अच्छे इंसान नहीं ला सकता है।

दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है। और ये भी आप जानते हैं कि बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है, बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है।

रब ने बना दी जोड़ी। रूप कुमार की आवाज में यह सुंदर सा गीत हम सब सुने। कहा जाता है कि नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।

यह सुंदर संदेश कहते कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे। क्या खूब संदेश भेजा भाई ईश्वर ने कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे हैं।

कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों के गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासला होने लगता है।

फिल्म कबीर सिंह, ये गीत जो गाए हैं अरिजीत सिंह, उनके आवाज़ में ये सुंदर सा गीत को हम सब सुने।

में कुछ संदेश भी था। ज्यादा लगाव रखना है तो अपना करियर से रखे, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है मगर अपना करियर जो है ना आपका हमेशा साथ देता है। सुनने वालों, यहां तक हमारे हिस्से के कार्यक्रम। आशा रखता हूं कि कुछ न कुछ नए गीत और कुछ पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम को बनाया गया। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार। मैं आपका सेवक संजय और आपसे विदा लेते हैं। और किसी ने अच्छे कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

0: एक फिल्म जो बनाया गया 1973 में, जंजीर 1973 में बनाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, आपको पता है कि इससे पहले जब ये फिल्म बननी थी तो सब एक्टरों से पूछा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, राजकुमार, सब ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था जो एक्टर ने गाया,
0: यानी कि हीरो के लिए कुछ नहीं था,
1: हीरो के लिए गाना नहीं था, इसलिए सबने मना कर दिया।
0: तो इसलिए सबने मना कर दिया ये फिल्म को, और तभी अमिताभ बच्चन को और प्राप्त हुआ ये फिल्म करने को।
1: तो अमिताभ बच्चन को फिल्म मिली और फिल्म इतनी हिट बॉक्स ऑफिस में हिट हुई कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन नाम दिया गया।
0: उस समय पे एंग्री यंग मैन कहा गया अमिताभ बच्चन को।
1: हाँ जी।
0: सुनो लो हम एक और सलीम जावट का लिखा हुआ फिल्म जो हम सभी जरूर देखे होंगे। फिल्म का नाम शोले है और उस फिल्म से एक गीत को और आपके लिए रखने के तैयार हूँ।

0: सुना लो जब तक है जान मैं नाचूंगी फिल्म शोले से निकाला गया और हेमा मालिनी ने खूब एक्ट किया ना बबली जी।
1: हाँ जी, और जब ये फिल्म बनी थी और उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी,
0: क्योंकि ये फिल्म लगातार 5 साल तक वहाँ बियोस्कोप में चला ना।
1: हाँ जी,
0: भारत में।

0: भी कुछ कहने वाले थे अभी कुछ पुरानी फिल्म के अंतर्गत।
1: हाँ जी जरूर, मैं बताने वाली थी एक दो जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी 70-75 में। एक हुई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी और एक थी सालिम जावेद जी की जोड़ी।
0: सालिम जावेद जी की जोड़ी, क्योंकि ये 2024 में सब दोबारा फिर एक दूसरे को मिलाया गया ना।
1: हाँ जी,
0: और ख़ास करके फिल्मी के अंतर्गत जिन्होंने बहुत सा बड़े बड़े फिल्मों मिल करके लिखे थे।
1: हाँ जी, इनकी फिल्में बहुत हिट हुई। ये फिल्मों में लेखक थे, राइटर थे, स्टोरी लिखते थे और इन्होंने शोले, जंजीर जैसी फिल्में बनाई।
0: ऐसे बड़े बड़े फिल्मों में और अपना यानी कि बनाए। हम फिल्म शोले का एक गीत की ओर बढ़ेंगे, सुनो लो।

0: सुनने वालों, एक फिल्म जो 1975 में बनाया गया, बबली जी ये किस दिन रिलीज किया गया था ये फिल्म जो 1975 में, और ये डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म का?
1: 1975 में जो फिल्म बनी उसका नाम था शोले, वो 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी।
0: भारत में तो दुनिया पे सबसे ज़्यादा फिल्म जो कहा जाता है कि बॉम्बे में बनाया जाता है, एक साल में कुछ 600 फिल्में कहा जा गया है कि बनाया गया, तो ये देखा जाए तो एक दिन में 2 फिल्म भी और बन सकते हैं, पर ये बड़े बड़े फिल्म, आ बेई सेई कितने प्रकार के फिल्म होते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: जो बड़े बड़े फिल्में होते हैं तो उसके लिए डेट निकाला जाता है, और हर साल ऐसे 15 अगस्त को भी बड़े बड़े फिल्मों जो और प्रीमियर में जाते हैं। तो 1975 में ये एक बड़ा फिल्म था, रमेश सिप्पी जी ने बनाए थे ना।
1: हाँ जी,
0: कलाकार उनमें
1: कलाकार थे संजीव कुमार जी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, और एक नया विलन आया अमजद खान।
0: उस समय के लिए एक नया विलन आया था अमजद खान।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है रमेश सिप्पी जी, उनको लोगों ने बोला कि आप नया विलन क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये फिल्म कहीं पिट ना जाए, आपको एक अच्छा मजबूत और विलन लेना चाहिए।
0: तो उस समय के बात है कि जब अजीत आदि जो विलन,
1: अजीत, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ,
0: ये लोग जो विलन का रोल करने हाँ लगे थे, पर अमजद खान के लिए ये एक नया रोल था जो जिसमें उसका नाम भी रखा गया था गब्बर सिंह ना।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के लेखक हैं, अरे सलीम जावेद जी, दोनों जोड़ी है जिनकी, वो कहते हैं कि हमने जब उनके गांव में, उन्होंने एक कहानी सुन रखी थी गब्बर सिंह, और सच्ची कहानी है, तो इसी के ऊपर उन्होंने गब्बर सिंह, अरे सुझाव दिया डायरेक्टर जी को कि विलन का नाम गब्बर सिंह ही रखना चाहिए।

0: और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर।
1: उस समय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और अमिताभ बच्चन जी उस समय सुपरस्टार बन गया था ना इसी फिल्म से, यानी कि सुपरस्टार का और जो जगह प्राप्त किए थे ना।
0: हाँ जी, लेकिन इनसे पहले उनकी फिल्म आई थी जंजीर,
1: जंजीर में जिससे हाँ पहचाना गया,
0: एंग्री यंग मैन।
1: एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन के नाम से पहचाना गया था। तो ये फिल्म शोले का और एक गीत और मैं कोशिश करूंगा रखने के।

0: क्या आपको पता है जब शोले फिल्म के पोस्टर लगे तो उसमें जो राइटर थे सलीम जावेद जी, उनका कहीं नाम नहीं था।
1: उनका कहीं नाम नहीं था तो क्या पोस्टर पे नाम लगाया जाता था उस समय पे?
0: हाँ जी, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, लेखक सबके नाम होते थे।
1: सलीम जावेद का नाम नहीं रखा गया था वो पोस्टर पे, और तो हुआ क्या?
0: तो फिर उन्होंने दोबारा से पोस्टर बनवाए और उस पर अपना नाम लिखवाया।
1: यानी कि पोस्टर पे अपना नाम लिखवाए ये सलीम जावेद का, रिटन बाय सलीम जावेद। ये सुंदर सा फिल्म जो 1975 में जाकर के रिलीज हुआ, और कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने ये बड़ा फिल्म बनाने का फैसला लिया था, पर उनका बजट कहा गया था 1 करोड़ था ना?
0: हाँ जी, उस समय में 1 करोड़,
1: उस समय के लिए 1 करोड़ बड़ा बड़का पैसा होता था।
0: बहुत ज़्यादा, अब भी ज़्यादा है।
1: और पर बनते बनते ये फिल्म बन गया था 3 करोड़।
0: हाँ जी, 3 तक पहुंच गई।
1: और 3 करोड़ हो गया था और ये फिल्म यानी कि बजट से बाहर को और खर्चा हुआ।
0: सही बात।
1: और शुरू शुरू में तो जब प्रीमियर पे आया तो डर गए थे कि ये फिल्म चलेगा नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर सब कहते हैं अच्छा 1 हफ्ते तक देख लो कि क्या रिजल्ट निकलता है।
1: तो हफ्ता बाद जब रिजल्ट अबे पूरा नहीं हुआ था, फिल्म बस फिल्म के डायलॉग के माध्यम से फिल्म खूब चल पड़ा ना।
0: हाँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें कि लोगों को कितनी, अरे घंटे लाइनों में लगना पड़ता था टिकट लेने के लिए।
1: कितने घंटे लाइनों में लगता था और टिकट लेने के लिए।
0: हाँ जी।

0: बड़ा बोझ है आप पर।
1: लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
0: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
0: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
0: हाँ मौसी, अब ये कंबक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: है तो क्या जुआरी है?
0: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
0: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है, अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
0: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
0: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ?
1: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
0: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
0: अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूं, कोई सौतेली मां नहीं।
0: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया, बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।

0: सलीम जावद के लिखा हुआ डायलॉग मौसी का भी कितना सुंदर सा डायलॉग है ना बबली।
1: हाँ जी, मौसी जी का डायलॉग, और वो भी डायलॉग जो धर्मेंद्र टैंकी के ऊपर चढ़ के मौसी को गालियाँ देते हैं।
0: ऐसे उसमें मेरे ख्याल से उस समय पे भी डायलॉग, सिर्फ डायलॉग से एक एलपी भी बनाया गया था ना, वो जो भारत में लोग खरीद सकते थे, वो सूरीनाम में नहीं आया था मेरे ख्याल से। तो लोग लाइन में खड़े हो करके और सभी डायलॉग जो बनाया गया, जो लिखा गया था और जो आवाज़ में रखा गया था, लोग बहुत पसंद करते थे उस समय पे, और आज भी वो अभी तक लोग भी पसंद करते हैं ना।
1: हाँ, क्योंकि जब मर्जी हो तो डायलॉग सुन सकते हैं।
0: हम एक गीत और, यानी कि सलीम जावद के फिल्म, उसी प्रकार से उन्होंने फिल्म शान मेरे ख्याल से और बनाए लिखे थे।
1: हाँ जी, शान भी थोड़ी शोले की तरह थी, लेकिन वो लोगों ने इतनी पसंद नहीं की जितना शोले पसंद की।
0: शान उतना नहीं चला था मेरे ख्याल से
1: ना, शान से ज़्यादा दीवार चली थी। दीवार भी 1975 में आई।
0: दीवार फिल्म, वो भी सलीम जावद के लिखा हुआ, 1975 में वो रिलीज हुई।
1: हाँ जी, और वो ये एक्शन और क्राइम ड्रामा फिल्म थे।
0: एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म। दीवार फिल्म में भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों भी थे ना।
1: गीत भी थे, और ये दो भाइयों की कहानी थे।
0: दो भाइयों की कहानी।
1: हाँ जी, और उसके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए। और एक भाई इंस्पेक्टर होता है, और एक भाई, अरे बाद में पहले छोटे मोटे क्राइम करता है, फिर बाद में बड़ा चोर कह लो या कुछ ऐसे बन जाता है। यानी कि एक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, इन सब ने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, निरूपा राय।
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

सुनने वालों, ये फिल्म दीवार से निकाला गया ये सुंदर सा गीत उसी समय के बात है जब सलीम जावद का जोड़ी थे तो बनाया गया फिल्म शान, और फिल्म शान से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत मैं प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

यहाँ तक जो मेरे हिस्से के कार्यक्रम हमने और आपके लिए प्रस्तुत किया। हमारे साथ दिए बबली आसरा जी भी और मैं हूँ आपका सेवक संजय, और यही आशा रखता हूँ कि आपका कार्यक्रम भी कुछ न कुछ रूप में अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537523247। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding.

0: सुर गाना के ये संगीत साज और संगीत में किशोरदास जी के गाए हुआ गीत है और चला जाता हूँ गीत का बोल है। इसमें ओरिजिनल में म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक दिया है आर.डी. बर्मन जी।
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 0736532047। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

हाँ, देर से क्यों खड़ी हो, और करीब आ जाओ ना। हाँ, रेडियो के फॉल्यूम कुन अब थोड़ा रेक्स और ड्राई कर देना, ताकि अगर आप घर में जिस कोने में भी हो, आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे, और आपके कानों जो तक पहुँचे तो आपके शरीर जो है वो मंडोले टंडोले हो चलेगा। दार वार्य Daar waar je je op focust, dat groeit. Ja, je kent je waarde. Ja, je kent je waarde. Weet wat je waard bent en weet wat je wil. En liever alleen dan omringd door fakeness.

से अब आई रिमिक्स किया गया गीत आपके लिए। कहते हैं ना अवल इधर इन न्यू यश। ओल्ड ओल्ड बॉलीवुड लव सॉन्ग्स रिमिक्स।

बड़े बड़े अखियों से डर गया जी। ये बैंत वीए देंग दचे बैंत, या ये बैंत वीए देंग दचे बैंत, एक बैंत नीत तफेल, ये बैंत खवों ते वैने खवेंत, द क्राफ्ट वन पॉजिटिव देंकन फूलन लेवन एन स्प्रेकन इस दान, ये बैंत वीए देंग दचे बैंत, वो चांद खिला।

अति सुंदर अति सुंदर फरमा दी है। और ये जरूर कहूंगा स्पैत इस खेन पेख, स्पैत इस खेन पेख, स्पैत इस खेन पेख हैत इस, het is het gevolg van keuzes die je beter wist. En vooral, mijn lieve mensen, lieve luisteraar, vier jezelf. Vier jezelf, want niemand anders weet hoe het is om jou te zijn.

अगले इतवार, अगले रविवार का पता नहीं कब मिलेंगे, पर मिलना जरूर। बाबुल की गलियां, बाबुल की गलियां फिल्म के नाम, ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है। और कहते हैं, हाँ कहते हैं कि हत लेफन इस अंसेरकल फन खलक फर्द्रित मोइलक तैदन एन नतीलक खलक खतैदन आज ये अन मोइलक तै दौर माक ऑन थाव देत सीकर डांस दात एर फ्रीडिग मोमेंटन, या फ्रीडिग मोमेंटन सुलन सीकर एन नोग इंस सीकर कोमन।

0: जाके।
1: आपने सुने कि चला चल लिफाफे कबूतर। जी हाँ, कबूतर और लिफाफे यानी कि एनवलप पर भी यहाँ पर गीत आपने सुने, और ये गीत आपके लिए चला दिया गया है फिल्म दीदारे यार से, हाँ, किशोर दा जी की आवाज में, और ये पिक्चराइज किया गया है नेखंतीन त्वेयन तख्त में।

अवश्य अवश्य कभी न कभी तो फंसेगी मेरी जाल में, इस बार महेंद्र कपूर जी की आवाज में। हाँ, खोजने पे पता चल गया है कौन सा फिल्म है। फिल्म का नाम मोती। हाँ, फिल्म मोती से महेंद्र कपूर जी की आवाज में। और क्या कह रहे हैं आज के वक्त में, आज के वक्त में ये कहते हैं कि नेम फंदाक लिफ द मे, neem vandaag liefde mee in je hart, vrede in je gedachten en vertrouwen op je pad. Ja, en met zeker met Gods rijkste zegen, God bless you, ja. Yeah.

फिल्म तो आपने जरूर से देखे होंगे। हाँ, वही फिल्म द ग्रेट गैम्बलर। द ग्रेट गैम्बलर से ये सुंदर सा गीत मोहम्मद रफी जी की आवाज में और आशा भोसले जी की आवाज में यहाँ से आपके लिए फरमा दिया।

सो ग्रेट, सो स्वीट, तुमको हमारी उम्र अलग जाए, ये गीत आपके लिए पेश किया गया है। देखे तो लता जी की आवाज में, जी सुरेली आवाज लता जी के, और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला। देखते फिर सस्तक में ये पिक्चराइज किया गया है। इसमें स्टार कास्ट है राजेंद्र कुमार, शायरा बानू, शशिकाला, धर्मेंद्र जी।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है यानी भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी रह स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी को भी

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तवड़ हाउस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी की आवाज में ए मेरे दिले नादा।

मुफी तौर हाउस से भी हमने पेश की है, ए मेरी दिले नादा तू गम से न घबराना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।

सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे। लोग अक्सर कहते हैं कि तुमने अभी देखा ही क्या है। मैंने देखा है घर कैसे बिखरता है, अपने एक पल में कैसे पराए हो जाते हैं, मोहब्बत कैसे मुंह मोड़ लेती है, ख्वाब कैसे मरते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने ही लोग किस तरह बदल जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं याद ना जाए बीते दिनों की फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। इसी फिल्म से हमने पेश की है मोहम्मद रफी जी की आवाज में याद न जाए बीते दिनों की। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने हमेशा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। अगर आप किसी को अपनी खुशी में याद करते हो तो आप उस इंसान के करीब हो। अगर आप किसी को गम में याद करते हो तो वो इंसान आपके करीब है। भरी दुनिया में आखिर दिल

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी, चलने का नहीं सही संभलने का हुनर तो आ गया। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गीत से आप सुनेंगे द टाइटल।

अभी आप सुन रहे थे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज में मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शारदा जी के वास्ते। जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो शारदा जी आप ही के नाम हम पेश करते हैं। गीत का बोल है, मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पारस मनी से।

मेरे दिल में हल्की सी, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी पारिस यानी पारस मनी से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शारदा जी के वास्ते, जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। मोहम्मद रफ़ी जी, हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।

अभी आप सुन रहे थे छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, अनीता है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा, पिछवाड़े, बुढ़ा खांसता, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनीता से हमने पेश किए हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता।

अभी आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी फ्रॉम द मूवी धमाल, तो से हमने पेश किए हैं जरा सा हम देखे तो ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

अभी आप सुन रहे थे गुरिया चुराना मेरा जिया, धमाल फोर से हम पेश करते हैं इसी फिल्म से फुलौरी बिना चटनी, चलो ये भी हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फ्रॉम द मूवी धमाल फोर से हमने पेश किए हैं। श्री टू है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: वो नहीं आने वाली।

फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, सावन में लग गई आग।

फ्रॉम द मूवी जेनी विद्स सनी, इसी फिल्म से हमने पेश किए है सावन में लग गई आग दिल में रहा है। श्री तू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से हमने पेश किए हैं आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। धमाल फॉर इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते, पैसा लाओ।

फ्रॉम द मूवी धमाल 4 से हमने पेश की है बैसलाव। पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दीरानी।

अभी आप सुन रहे थे रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो तुम ही हो बंधु। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल्ली से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से दिल तक, ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। रुत्वी पांडे की आवाज़ में हम पेश करते हैं घाघरों।

अभी आप सुन रहे थे घाघरो रुत्वी पांडे की आवाज में इश्क से आगे ये न्यू सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

दिन के इन खुशकृत यर्मिया ओतो बेचात्रा भैया कागज फागज सब उल्टा सीधा बनाई के और एक के अब पकड़ी से सिपाही एगो बेएस एगा हाथ फन एफएम एमएफ एगो मारक एक्स आंखस का फॉर $3,300 हर फूर्त verschillende mankementen, maar bij de aankoop leken alle documenten in orde. De reparaties verkocht BS de auto door aan een klant. Oude verkeerstechnische dienst van de politie. Keizers blijft kegele onderzoeker het goto wat beslag kelisje. Gelegd vanwege een openstaande rekening bij Carcenter Opper Jeristi. Waar de auto eerder was verkocht, uit de politie onderzocht, zou zijn gebleken dat MS en BS een valse of vervalse KKF-uittreksel opnam van Carcenter en van Opper Jeriti had overgehandigd. Na overleg met de OM zijn ze in verzekering gesteld. Maar ja, deze oplichterijker het raam. Dus het bedrijf KKF, kagetje in karke. En Opper is een fraude rode karke. Auto wat beetje, auto wat met 1000 euro mankement raam. तो ये सब बात है सूरीनाम देश के जो आपको हम बता देते हैं हमारे प्यारे प्यारे जनता तो हम जाए भैया हम जाएला अमेरिका के और खी सेफा हाल 100 मिलियन फतन ओली एंड डीजल आउट नोट फॉरआर फ्रॉम द ड्रेगमेंट ट्रिम खी सेफा लंदन जुर्बा आप लोग जानो हैं ओमा बोले उसे 100 मिलियन बैरल तेल डीजल निकारी से का नोट फॉर आर्डर फन वे का स्टेक इन द ब्राउन स्टॉफ प्राइस जो तेल इतना महंगा हुए है तो इसे अपन नोट फॉर आर्डर में से निकारी से खेसे ही फलांदन और बतावे इस्ते 20 दागन इस्ते 20 रोजों है का बोले फॉर आल डीजल बोले खेसे ही फलांदन जो कनाडा डच्चलैंड फ्रांकरिक इटालिया जापान Eurocabele Verenigde Koninkrijk en de VS en hun partner staat in een verklaring van de landengroep G7 verder werden. En hij laat verder weten geen exportbeperking op energie tussen de 7 landen te willen invoeren. Trump legt duidelijk over, zegt de Franse president en G7-voorzitter Emmanuel Macron. De G7 landen met bij jou met Nederland je naam te kahuna milen he Nederland de expert bij jou apart eigen janta ke khali belasting maar ik bij jou toen we jano hier box 3 ke baare me ketra bhail he apu sab mangega jo nan mi tari mani paisa apas spar kare okkar gatai dabai se bij jou rakhe ringwa aur ee sab cheez ke jo hum log ke tel itra manga hue he ekar baare me kuch na karega europese commissie heeft verbod op export van diesel eerder op de dag volledig van de hand gewezen zijn woordvoerder van de commissie vrijdag. Iran oorlog verstoort oliemarkt, bhaiya. Iran ke oorlog jo nu verstoort kare hai. Iran mein jo oorlog hoega, aadha barish hoega. Bole flinke verstoring van de oliemarkt. Prijzen zijn gevolg bij op een snelle uitbreken van de oorlog van landen onder leiding van internationale energieagentschap. Al 400 miljoen vatten vrij Trump heeft geklaagd dat Europa daarbij te traag te werk gaat. To je baan, to sehi baan, te Trump ke bhai. Traag Europa ke kaam apa Nederland twee ke boli lak ketra traag hai bhaiya. O khali jane hai ga twee de kamer me khali probleem banawe apan eik janta ke gatai dabawe bhaiya hiya farho ke hua farho ke aur jai ke का बोले हैगा कुछ ठीक से ना करे हैं अभी आप लोग के बताएंगे बॉक्स 3 के नवा रीखल्स जोन हैगा नवा रीखल्स जोन सबन तो इधर कामर्स में बनाई सेगा कि ई सबन बॉक्स 3 वा के रीखल्स वन कैसे हैगा अलगमेन फॉरवर्डन फॉर द बॉक्स 3 रीखल्स मेंसे दैट इज हील हील हील एर एंड दैट सेन से बेसिक मेथड वर्कन ये बात है भैया फ्रेश फेस खुद यहां बतावे हैं बॉक्स 3 के बारे में जो आप लोग को हम यहां पे अभी बताएंगे कि ई रेखलिंगवा का हैगा बॉक्स 3 रेखलिंग जो नवा आयल हैगा तो दोस्तों ये सब बात जो है आपको हम सिर्फ रेडियो फाहुन के
माध्यम से बताते हैं। NOS बतावे फ्राई फ्रागन ओवर द बॉक्स 3 हु कौन है सोन प्रॉब्लम वार्डन एंड व्हाट इज नीड ऑप्लोसिंग ई बात हैगा आप लोग जाए के नोट्स पे पढ़ सकते हैं जितना अलमी बॉक्स 3 पे है ओकर बारे में आप लोग के हम बताइए न्यू क्वालिसी प्लान जो रहेगा ब्लास्टिंग के बारे में फरबोखन फ्रॉम बॉक्स 3 के बारे में बलांग रेक्स टू एंटवेरप जो अनखमीन फाइनेंशियल बस्कोविंग के बारे में हैगा बोले व्हाट बॉक्स 3 कौन ची है कौन ऐसा प्रॉब्लम है कने वार्डन बलांगरेक्स फ्रागन ऑफ रई तो आप लोग के छोटा रूप पे यहां बताएंगे बॉक्स 3 कौन ची ओमा गिरे व्हाट फॉल दार ऑन ओक अलवेर अंडर बॉक्स 3 के नीचे कौन ची गिरे है हैव यू वेनिक स्पार्कल geen beleggingen en heb je geen tweede huis dan zal je vermoedelijk helemaal niks met box 3 te maken hebben dat ook het dusra ghar na hai तो कमती पैसा स्पार कर ले बाटे बलेख ना कर ले बाटे तो बॉक्स 3 में ना आइए इन दर खफाल बता लिए सो ऑल द मेस्टर नीड ला अलीन ब्लास्टिंग इन बॉक्स 1 ओ खाली बॉक्स 1 के पैसा भरी जे तो के घर द्वार तो ये दवाल कीनल ना है और बोले अब लोन ऑफ एट केयर इन दिस बॉक्स लीवर स्टार्ट्स केस फॉर फेयर वे एंड मिस्ड ऑफ सो 90% फॉर ऑल इनकमस्ट ब्लास्टिंग बॉक्स 2 कौन जी भैया बॉक्स 2 का मतलब हैगा बोले हैगा मेंशन के जे को बदरैफ है जेके दुकान है बदरैफ है वो सब आदमी है बस लोटन फन फैन नोट्स कप के बारे में स्कैटिंग 500,000 आदमी के बात है इन बॉक्स 3 से तो सोन 2.5 मिलियन मेंशन जो बॉक्स 3 में बा और बॉक्स 2 में जो बे बा 500,000 आदमी है दार इन बता लिए ब्लास्टिंग फॉर रेंडमेंट ऑफ स्पार गेल्ड आंदेलन और क्रिप्टो मिंटन एंड ओक एन ट्वेडर वार्निंग तो के ट्वेडर वार्निंग पे बा और का बोले हैगा और आंदेले हैगा स्पार गेल्ड है रेंडमेंटन है तो के बदरैफ है तो मां 500,000 आदमी के बोले इन बॉक्स 3 सेट इन सो इन 2.5 पे अब जाएला वारम मुड बॉक्स 3 ऑफ द स्कोप सेन काहे के बोले द पॉलिटिक को निस अंडरस्टैंड नान आइसप्राक फन हुगा राज 2021 में हुगा राज कर देसेगा का बोले हैगा आइसप्राक करी से बॉक्स 3 के बारे में जनता तो ओकर बारे में बताए हुगा राज कौन ची बोले रहा हुगा राज बोले स्ट्राफ टैक्स इन स्ट्रेट में द वेट overheid had geen gebruik mogen maken van een fictief rendement bij de vermogensrendementheffing. Ook wel spaartax genoemd. Hoge Raad oordeelde eraan in de jaren 17 en 18 mee. In strijd was met de wet. Daardoor is de belasting die de aanslagen van de belastingbetalers die bezwaar maakten tegen de fictieve rendement opnieuw beoordelen op pas van het werkelijke rendement. To iemand al lamba chowda het dus toch een aanplok ook goed parna padega. Die raad, de Hoge Raad 2021 mee, uitsprak er zeker politiek keker waren mee. Maar die hebben hier 2026 mee, hoe jullie hebben is het goed karisna hè. Op is het uiteindelijk moeten ze wat gaan doen. En hebben vanaf 2021 ze door hebben gekeken bij box 3 of box 2 ke bare mee. तो बताए गए दी ओर्डेल दा दे खसखत रहने में द्वार में बलास्टिंग दिस रीकंड नीत ए लकवास इबान बोले हो खरांत फोरांस पार्डर्स वारन दार फन द दीप से बताल द फाक मेर बलास्टिंग दा दा से अन द रेंट फन अ बैंक रीकन मान लिया जाए तो के पैसा हैगा बैंक में और बैंक में तू पावे 2% अंडर हाफ परसेंट तो ओ अंडर हाफ परसेंट से ज्यादा तो स्पार खेलते हो के तो के बलास्टिंग भरे पड़े और फर्दर रेट तो बोले तुम पैसा स्पार करो जो उस सब के दे वो और वो पैसा जाए का बोले हैगा दूसरे के हेल्प पे aan de rechtelijke uitspraak te voldoende zet het kabinet Rutte 3 keer waarop snel tijdelijk manier of aan de belastingberekeningen op dit tot op de dag vandaag nog geldt maar ook dit systeem kent een groot nadeel mensen met hoge rendementen betalen nu relatief weinig belasting of de schatkist krijgt daardoor jaarlijks 3 miljard euro minder binnen de eerste ieder jaar dat er geen nieuw plan komt lekken de miljarden weg om die reden voelen politieke partijen tijdsdruk op snel met een alternatief te komen. Dat is de kabinet Rutte 5 schoof en jetten aangewerkt. Op via jetten kan je hier per kam krijgen. Oor betaalde je hega coalitiepartijen D66, VVD, CDA. John Asset coalitie hega zijn er over eens dat er op de lange termijn van een vermogen winstbelasting moet komen. Maar er is een technische probleem in mijn eigen hem. Minister van Financiën bolle hega 2030. Vanaf 2030
zelf 2032 de mogelijke belastingdienst op banken hierfijn hun systemen moeten aanpassen, mensen. Dat hebben ze gezegd. Op het eigen onrust met bedrijven en beleggers. Deze tussenoplossing leidde tot zoveel onrust bij bedrijven en beleggers dat minister Heijn Financiën en VVD 2 weken later alweer zei dat de wet terug naar de tekentafel moest. Vervolgens ontstond er een groot verschil van mening tussen coalitiepartijen over wat er dan wel gebeurd moest gebeuren. Tot behoud lembaat jouw ralikele aaploekje hem. Koet 2, box 2, oud box 3 keer waar hij met ade. Abbe definitief koetje na hè. Maar de situatie rond box 3 is nu vrij chaotisch, zeg maar. Omdat de Tweede Kamer al met de vermogen aan was in box 3 wet heeft ingestemd, ligt dit die nu bij de Eerste Kamer als het kabinet een meerderheid heeft voor een nieuwe plan. Moet dat via een wetswijziging weer langs de Tweede Kamer. Pas daarna kan de Eerste Kamer erover gaan stemmen, mensen. Toch een boelie tulpje koets bataille die ik er waren mee. हमारे जनता ये बलास्टिंग जोन है का एमा नीदरलैंड बहुत बढ़िया है मां बोलिए हम लोग के तेल और सस्ता करें के दार इस ओनसे लैंड नीदरलैंड हील एरख अख्तर में से तेल यहां हम लोग के इतना महंगा हो गया है कोप क्राक फर्स्टरिंग इस वाला सब कुछ यहां दुकान में महंगा हो गए मार एयरवर्ड नाम लग हील वेनर iets gedaan door onze regerings. En ze zijn alleen bezig. Hoe kan ik onze eigen mensen in het land belasting gaan innen. Zodat hun namelijk door gaan met hun regering. Dan moet ik in Nederland gebaren maatelijke partij. Simons Kabole 2017 moeten wij keuzes maken. Kon keuze maken. Kerwaye Jennifer Geerling Simon Bolle president. Bolle 30 september. Bolle benadruk karise kijk 2027 met z'n kijk keuze kareke. Maar we moeten blijven maken vanwege de beperkte financiële ruimte. Totale overheidkenskomst in 2027 mee. Oma hij gaat 70,1 miljard SRD, terwijl hem lukken uitgaven hij gaat 80,9 miljard, dus ook een wat lebbige 10 miljard tekort hij gaat. Daarmee komt het genaamde begrotingstekort op 10,8 miljard, oftewel 4% van het bruto binnenlandse product. Je kunt kooi, totaal bahasa mole BBP betekent bruto binnenlandse product, doen binnenlandse producten ook erbare mee, inkomen erbare mee, dus Suriname 10,8 miljard tekort. Korte wegen, totaal ofwel 4% van de BBP mensen. Bolle Simons presenteerde de cijfer tijdens de jaarrede van 2027 mee. Totale uitgaven heeft 25,4 miljard bestemd voor operationele uitgaven van 55,6 miljard. Bolle voor de uitvoering van de programma's. Toen hier heb je dus toch आपको और पढ़ना है बखरूटिंग के बारे में तो आप लोग खुद जाइए और पढ़िए आपको हम छोटा रूप में यहां बता देते हैं कि सिरनाम komt tekort met de begroting van 2027 en ze komen ze een kort van 10,8 miljard Surinaamse dollar. To janta एक न्यूज आपको ब्रेकिंग न्यूज हम बताई है और जो आज ये न्यूज पूरा दुनिया में हलचल मचा रही है एक फ्लिकटाइक हां एक फ्लिकटाइक अबू धाबी से उड़ल भैया ओ कना फ्लाई दुबई से और वो फ्लिकटाइक जात रहा इजराइल में हां जनता इजराइल में वो फ्लिकटाइक जात रहा जेमा 150 को खाली इजराइल के आदमी रहा उतरे में भैया फ्लिकटाइक उड़े जा है फ्लाई दुबई अब प्लेन उतरे में नीचे गिरे लगल है और कॉकपिट तू जाने जहां पे पिलोट लोग बैठे हैं कॉकपिट भैया उताला रहा और ओमा से चिल्लहट मचल है वो लड़का सुनी से और चिल्लहट मचल है तो आदमी ये दौड़ल उतरे में कवाड़ी कॉकपिट के खुल गए है और जब भीतर में गइल हैगा आदमी लोग जो पचाशीर से चार गो हेल्थ भैया और गइल है तो देखे एगो पिलोट खून में लथपथ है एगो पिलोट और वो पिलोट के छुरी लगल है चारों बगल खाली खून और एको पिलोट तो खाली मांगे हैगा प्लेन वार्स स्टार्ट करे मतलब गिरावे मांगे क्रैश
करे मांगे है तो जो चार गो आदमी भैया हेल्थ रहा पकड़ के एक वो आदमिया के पकड़ के बानी से और दुई गो पिलोत जो प्लेनों में रहा उस सब जाए के फ्लिक तो एक वहां मोई से अबू धाबी में जाए के उतार दी से भैया और पता चलल है जो हम लोग जो पिलोत खून में लपथत रहा वो हमारा एक इंडिया के पिलोत है जेकर नाम है स्मिथ स्मिथ मचर हिंदी के इंडिया के है और वो जाए के सबके जान बचाई भैया की कवाड़ी खोल दे इसे नहीं उपलेन नेक्स्ट दौर तो हो जात और ओकर माने में क्रॉप दबा दी से गा अने स्मिथ जाए के कि प्लेन वा सबन हाईजैक कर मतलब कि अने हाईजैक कर ले से और इसराइल जाए के अपन खफेक फ्लिक तो एक भी उड़ाई से प्लेन वा के लुन तो कर ले रहा भैया मजे प्लेन फिन मोई से चले लगल तो रिस्टक भैले ब्लैक भैले के जोन एको को फिरो उतरा हाँ उ को फिरो जो रहा उ मांगतरा प्लेन वा के नेस तोड़ करे है वासन टेररिस्ट मेंस मार फान फ्लिक तो है इस अन को फिरो फान ओमान एको देश से वहां पर वहां के था और उ मांगतरा जाए के प्लेन वा गिरावे एक अरबारे में नरेंद्र मोदी नेतालियाओ और का बोले हैं हमारे यानी कि अमेरिका के ट्रिम जोन है इंडिया के बहुत सबासी देश से सल प्रीमियर नरेंद्र मोदी और जाए के स्मिथ ने मच्छंदर के हिंदुस्तानी पीड़ोक जोन इंडिया के ओके अस्पताल में बैल करी से और बताई से कितना जनता के तू आज जान बचे ले बाटे हमारा बोले हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी जैसे फहून है फरेनल द हिंदुस्तान से रेडियो ऐसे है गए हिंदुस्तानी रेडियो ऐसे इंडिया के पिलोट जन है उसका नाम है स्मिथ मचर और ये जाकर उतरा आदमी के जान बचाई से भैया तो आज वो पूरा दुनिया में एक सब गुन गावे हैं और वो बोले हैगा एक प्रोबेर्ड में लीफन तरेदर मार वेस्ट ओक दैट एक नीट ऑल दी मेंशन कौन लात स्टेफन ऑल दिस ने मचर बोले है ओम स्क्रीव तो फूलन दैट फ्लिक्ट एक अन डाइक फ्लिक्ट नाम ही ना बसलोत है गोन द डोर फ्रॉम द कॉकपिट ओपनन बोले एक वर्क तक ओक geslagen बोले मार दी द डोर ओपन इदरिन kwam naar binnen. Passagier kwam de cockpit binnen, want overmeester de co-piloot en leidde het vliegtuig om een crash te voorkomen. Het toestel maakte een noodlanding in Saudische Tabuk. Het voorval in de Fly Dubai toestel dat onderweg was naar Tel Aviv wordt onderzocht. Volgens Israël wilde de cockpiloot het vliegtuig laten neerstonden. Or ze bolle hij, gaan 9-11 mee. En toen de Amerikaan bijna september mee ooit een chief bolle voorkomen kardesiga of aantje admission hè, John Indiaanse piloot hè, Smith, ik een naam ba, Smith, Macher, woensdag gewoon geraakt en een aanval van een kok. Piloot op een Fly Dubai vlucht heeft gezegd dat hij passagiers wilde beschermen. Hij zei dit tijdens een videogesprek met de Indiaanse premier Narendra Modi. Toen aapko ye achha kahani aapko hum jarur batate hain aur hamara Suriname ke jo racist bhaiya racist hai ek ingi hai aur jai ke krakang bole ala kuli yampani isi musgwe भैया अपने इंगी कौनची बनाई से भैया बेनलांत में आज तल झलवा झूले है और बोले कूली मुस्गवे ते इतना रसिसी से अस्पराक देश में हम लोग के सुरिनाम में हुए हैं और हम लोग के रखेरिंग और रखेरिंग जोन है एक कर का बोले हैगा जेनिफर सिमोन के और ग्रेगरी रिसलान के अपन मुंह ना खोले है हमारा जोन हिंदुस्तानी है देना का फोर्सेतर जोन है अधीन है परमेश्वर है और हिंदुस्तानी है कोई के मुंह ना खोले है कि हमारा हिंदुस्तानी के ऐसन ऐसन बात जाए के सबन बोले वो कफरी भी भाई को दुकान का आगे बोले रहा आला कुली मुझे ना इंडिया तो ये सब बांध के इतना रसिस्ट ऐसा का हमारे देश में हुए हैं लेकिन कोई मुंह ना खोले हैं और जाए के एकर बारे में खाली सोशल मीडिया पे फेसबुक पे सबन और नमिया गरियावे हैं मैं एक को अक्सी हुआ कर रखे रहे श्रीनाम में ना लेवे और हमारा भारत देश में देखिए भैया आज दुनिया के एक चिन्ह बन गए हैं जो ये आदमी करी से फिर
वर्ल्ड पे आज सबको होकर गुण गावे हैं कि इतना आदमी को जान बचाई से अपन जान खतरे में डाल के। तो दोस्तों हम चलते हैं, आप लोग को एक गीत सुनाएंगे, तो गीत के बाद में अभी हम वापस तुरंत आ जाएंगे।

एक रिमिक्स सॉन्ग था छूकर मेरे मन को पिया तूने और क्या क्या क्या इशारा के बातचीत हो रहा है।

लन के दुआने दुआने कर भैया पाई से कौची बंदर के जीप मिलल भाई एक मिला लावत रहा और जाने उके बोले ब्रल आम जाने सुरीनाम में जइयो जब बरखा बरसे है तब जंगलिया में सुना बाबुल हम लोग बोली तो मो ब्रल आप है भैया बरखा का चिल्ला तो नींद लान के दुआने दुआने को पकेट पाई से भैया जहाँ ब्रल आप के बोले यहाँ बोले हैगा नींद लान से दुआने दुआनीज है बोले इन पॉकेट में तकन ब्लादरन एर अंदर और खानिश मटेरियलन तुए तोंग बिंदरन फन अन खुयाना ब्रल आप ओके बोले अलुआता माकोनेली आन खत्रोफन सेंडिंग वास ऐ सुरीनाम भैया सरनाम से अफकोर्स तक रहा उका बोले ब्रल आप के अब लकड़ी पकड़ी से कर ओझाई करे वाला चीज कोई पोस कर ले रहा भाई और चुका करियो ये इतना गोश मछली भी कहा है का तू ब्रल आप के का बोले बाबुल के जीव जइयो खाए बोले है तेज नीत बकेन वार ऑन द फॉर सेंडर द डील को ऑन द नीलन नीलन स्टीर द डील को ऑन द नीलन वार द सम को ब्रेक फॉर डेकोरेटिव ऑफ सेरेमोनियल dul enden mai jibia konji bhaiya for het binnen brengen van een beschermde dierlijke delen vergunning vereist die ontbrak in dit geval waarna twee tongbeenderen in verslag zijn genomen तो कोनो जीप पोस कर ले रहा भैया जीप पोस ब्रासिलियन के सब पकड़ी से भैया सुरीनाम में भैया 2,550 अमेरिकांस डॉलर अपन जूता में लुकवाई के एयरपोर्ट लगे रहा भैया और लेके ओके मांगत रहा ब्राजील जाए तो ओके पकड़ी से बोले तू काहे पैसा हुआ डल ले रहे बोले ओमदास को तू एक दे हमार पैसा बसला कर ले रहा बोलो एक मारे लुकवाई बाटी है फरकलार दे बोले हम जाने कि $10,000 माके में लेके जाए के बोले हम जंगल में सोना खोदेल बोले वही पैसा बोले हम लेके जाएला पिस्टल उजात्रा फिया खुयाना ना ब्राजीलिया तो फरतरेकन और बताए द ब्राजीलियाँसे फरदाखते इंटरनेशनल लुकहाफन आन खोदन तुन है ऑफ द पिस्टल फिया गायाना ना ब्राजीलिया तो फरतरेकन बोले है बे en werd in de schoenen die bedrag gevonden. Volgende verdachte ging het om de verdiensten als goudsmid. Zo'n aanraha, bole bhaiya. O, bole hem dan een keer $10,000 mag gelijke. De man verklaarde het geld in schoenen te hebben verborgen, omdat hij, bole eerder in Guyana door de politie zou zijn beroofd en vreesde dat dit opnieuw zou gebeuren. Ki Guyana, bole skoutu, bole ook beroofd kortuko la paiswa ke. Bole ook mane paiswa honga lukwairi. Na overleg van de officier van jullie werd de verdachte in verzekering gesteld. De zaak is later op verzoek van de verdachte buitenproces afgehandeld, waarna hij in vrijheid werd gesteld. तो गयाना के सिपाही के भी विश्वास ना भैया ये हु सब बात है देखो गयाना में एक 6 बरिस के लड़का भैया सेस या रख यंग दूर खकाप इन गयाना 4 बरिस के लड़का के कटलीस के काट के मांढल ले बाटे ई बात हुए परिका में खुद गेले 7 रोज वहां रहले भैया अन सेस या रख यंग वहां परिका में सबन काट दे से गयाना के बात हुए हैगा बोले हैगा एकर बारे में बोले को चिनुआ है भैया चिनुआ काट से लड़कवा के चिनुआ पकड़ के बंद करी से और बोले हैगा आइडेंटिफाइड एज द इवन इन चाइनीज़ इफेंग एन काओ है स्लाक्टोफर चिनुएक लड़का रहा फॉल्क्स द पुलिसी फन अ ब्यूरलैंड सुरीनाम वेर द यंगन ऑफ क्वाट ओवरफील्ड टोटले लोकाले टाइटेड इंसिडेंट में द फरदाखते इन से नेक गकाप्ट ओकर गटैया में काटी से भैया द यंगन वेर में स्पूट ना द किंडरिगियल हॉस्पिटल गब्राख बे द आर्मस्कोम्स कंस्टेटेड एन आर्स दैट ही रेस वास ओवरलेडन लड़का के गटाई तू कटिए भैया तू लड़का भला कैसे बचेगा नानी बड़ी दुख के बात है सेस यार किन तो ये सब एक कंटेनर भैया जाकोनेसन के बांटी तो वैसी कन्हैया से सनाम के कंटेनर में बेंदी से हेल्प कुदर अंदर वेख ना जाकोनेसन हैस इन परमारीबो स्टेक्टिंग फ्रेंडन जो नीदरलैंड में हैगा और स्टेक्टिंग स्वीटी मरीन एको बड़का कंटेनर में हेल्प खुदर से भर के और सुरीनाम पठाई सेगा और सुरीनाम में आई गए है बलांग रहे के डील फन लैंडिंग इज बस्टेम फॉर जाकोनेसन हैस जेमा बहंदल ताफल है ऑपरासी ताफल है मोनिटोरन है
और दूसर में इजी से मटेरियल है गस्टेक्टिंग स्वीटी मरीन रिक्स एक स्पेसिफिक ओपन द स्टीन इन फन जकोनेशन हाइस और बोले है गा एन हीव दारम अ ग्रोट डील फन द मेजी से खुद फॉर फिजिकल है फसामल और बताई गई है और होएगा और ऑर्गेनाइजेशन से बोले उस सब जाएगा अने हॉस्पिस अलमेरे एंड कैटरीना कमिटे uit Uithoven ze geil het je juan daarmee is de container gevuld met brede verzameling van materialen die in Suriname gebruikt kunnen worden tot behoud het chabat he ki yahan se meji se stienen hua ja hai jo hamara janta hua pe jo hinsi kon hai jo se help pai sakega de help actie krijgt binnenkort een volledig vervolg 13 oktober ke opnieuw container geladen met loos aan de een passa wijze hoogweg 1 in Tiel तो उत्तील से जाई हमारी जनता अब देखो यहाँ बताए गए है ओली प्राइसन डालन तो अंदर द हंड्रेड डॉलर और यहाँ पोम्पू पे उतरे है भैया प्राइस वा ओली प्राइसन से इस दूसरा के अनसील खदाल और बोले सितंबर में नोक्स प्राक वास फन एन फ्लिंक स्टेकिंग द डालन फॉलो द बरिक्टिंग फन एनालिस्ट फन एन मॉर्गन और बोले हैगा यहाँ पे होएगा जो मेरे ओस्टर में कॉन्फ्लिक्ट है ओकर बारे में से प्राइस चढ़ाए रहा ओली ओली लीफरेंसीज फनाइड Persische golf na genoeg op de niveau zijn van de voor conflict in de Midden-Oosten gebaren mee. En ja, wat hij een van de Amerikaanse olie kost $90.39. Daarmee zijn olieprijzen gedaald tot maar onder de $100. 20% van de wereldwijde olieleveranciers. Door de blokkade staan honderden olietankers al maanden vast. Daar komt bij dat er veel schade is aan de olieorganisatie. Een organisatie en gas, gasinstallatie. Bolle Midden-Oosten mee. Ijagarwaka bedoen. De Amerikaanse president Donald Trump. Ook een nieuwe voorstel. Crisis voor staken vuren is afgewezen, mensen. हमारी जनता आपको हम समाचार बस सुनाते ही रहेंगे फॉल्स साल्डो फरक्लारिंग फॉर लीनिंग ब्रिंग अमतनार इन सेल भैया एगो अमतनार है सुरीनामे भैया ओके पकड़ के सब बंद करी से वो फॉल्स है इन खस्क्रिफ्ट कर ले रहा एगो औरत है भाई अपन साल्डो ओवर फरक्लारिंग फॉर एन बैंक है बन खबर है ओम बे अंदर बैंक पर्सनलिक लीनिंग इन एसआरडी तक रहेगा फ्राउड करी से क्रॉस पॉलिसी नाम पकड़ के बंद करी से अपन सालों पे पॉजिटिव कर ले रहा और दूसरे बैंक पे गए रहा कर्जा निकारे फोकस पॉलिसी अंडरसुक है द फ्रॉ फॉल्स साल्डो फरक्लारिंग फॉर द बैंक इनगदीन बे अंदर फाइनेंशियल इंस्टेलिंग ऑन दैट मी इन आनमेरकिंग को फॉर पर्सनलिक लीडिंग एट अंडरसुक इज फर्दर नार फॉर कॉमन की फरदाख्ता फॉर फॉल्स फरक्लारिंग सो हैवन gekregen फॉर अन मान एंड वी से हियर फॉर एन बेडाग फॉर एसएडी ही बताल अंडरसुक बाय द डायरेक्टर burgerzaken leveren echt een opmerkelijke detail. To paisa nikare khar bhaiya isab ka ka na kadare he via fraude hua fraude aur kuch karna paave he hamari janta pyare pyare janta jo aapko hum yahan se aur aage ko sunate he lekin aap log ke ek geet hum sunayenge aur wo hai munni badnam bakandalit

0: कभी कभी बदनाम हो जाए भैया, मुन्नी बदनाम हो गए है। आप लोग को अभी बताए थे हम कि इंडिया में जो इंडिया के पिलोट थे दोस्तों, और उसको मोती ने तान किया है, जिसके नाम है स्मिथ माचंदर, और वो अब ठीक जा रहा है। उसका तंदुरुस्ती जोन है सिकन है, इसमें मोती ने उसको यानी कि उसको तार किया है, और तार करके पूछा है कि कैसे आपका अब जा रहा है और कैसे बातचीत हुआ है। तो आपका वो इंटरव्यू छोटा रूप में आपको हम यहाँ से सुनाते हैं, बस सुनते रहो।
1: तबीयत कैसी है
2: सर? सब ठीक है सर, सब ठीक।
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
2: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे। सात से कैप्टन

0: बोलता।
1: तो ये गesprek थे यानी कि बातचीत हुए थे यानी कि हमारा नरेंद्र मोदी ने तार करके वो पिलोट जो थे यानी कि सीमित मच्छर जो सिकंदराबाद में है जो फ्लाई दुबई के कॉकपिट में जो को पिलोट थे उसको यानी कि घायल कर दिया था फ्लिक्ट एक मात्रा यानी कि नेस टॉट करे के बारे में आपको पता है अभी उसके बारे में हम बताए थे दोस्तों। तो हम

0: ईमेल बाउतर से स्त्रात में और ये शहर में है रास्ता तूफान हम जानीला और जाई के घर में ही लंडवा के घुसेरी से और 20,000 पैसा ई बुढ़िया के नहीं रे जीव रखियार के बुढ़िया के पैसा चुरा ले से मैया के बोले द दाद दी से अस एबीएस में दे वर्कर दी ने मीटर कम opnemen het slachtoffer had het geld enkele dagen eerder van de bank opgenomen om deze maand haar 80ste verjaardag te vieren. Bichari re bichari. To ye ho gaya hai. Bara dukh ke baat hai. Aapke ghare je aaiye. Meter eter check kare bhaiya. Tab dekh liyo pehle paas se. Bahirwe pakadiyo ghar mein tilok ke koi ke balawe kaam na. Van meter bahire hai. Ghar mein meter na hai. Na bole yo ghar mein. तो ये बात है दोस्तों, यहां से अपना समाचार को हम खत्म करते हैं। बताते शेल ब्रतुरन फ्रूको फर्ट्रैक और गयाना एसिड काउंसन इन सुरीनाम। शेल जो नहेगा गयाना के जो तेल निकालो तरह फ्रूक फर्ट्रैक कर दे वहां चल गए हैं और देखे हैगा तेलवा जाए के गयाना से आप सुरीनाम में निकारे में यहां बताए गए हैगा स्टाटन स्टाल ब्रुक ब्लॉक जो रहा फॉर द ग्रोथ ओली फॉर इन गयाना फॉर गसावन फॉर ली शेल हेड कभी op het verkeerde moment bolle hega samen op 22 september tijdens de ROG energieconferentie in Rio de Janeiro, Brazilië reageerde op een opmerking van de Rijstaat Energie topman Jaron Rijstaat, die stelde dat Shell Guyana een beetje te vroeg had verlaten. Samen noemde die beoordeling nog een understatement. Je baant he, Janneke. Atom Pai bedankt als voorzitter van de commissie van onderwijs. Bolle voorzitterschap hem jaila. Commissie je onderwijs, bolle hoa kuch hoe na he. To dosto, jahan tak ta, hamara aandies, avinies, kis samachar. जोनी नंबर वन है हमारा नाम सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार प्यार भैया दाम से सीकाल। हमारा प्रोग्राम हर मंगलवार के शाम को 6 से 7 बजे होता है, शुक्रवार के 6 से 7 बजे तक होता है और रविवार को दिन में 1 से 2 बजे तक हेराल होता है। बुधवार के भी सवेरे हम हेराल करते हैं। दुश्मन से आशिक मिस्ट है नमो खुली दहरानी खान लैस्त्र
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL reizen 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar. Van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mar.

आज नहीं, शायद कल नहीं, मगर वो दिन आएगा, तू मेरा नाम यूं लेगी जैसे अपना कोई हो, मैं तेरा हाथ यूं थामूंगा जैसे छूटना मुमकिन ही ना हो।

मोहन जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुरु आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं, रविवार शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों, यश उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। फिर अक्टूबर 20 सोमदाह मिदाह का ये शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। तो जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड में थे फील लजतर प्लेजियर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेमाल इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऑन कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप daar greep van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren op de volgende telefoonnummers: kantoor 073562247 of Studio Katarka nummer 073563622777. Quality Grant your service के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो, नहीं तो vergeten है onze kwaliteit is altijd uw garantie en natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij Faun Hindustani Radio, toch? हम जब पहले आप श्रोताओं ने कति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके रोसिता बहन जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। यह उम्मीद है हमारे फुल टीम की तरफ से कि जो प्रोग्राम रोसिता बहन जी आप श्रोताओं की खिदमत में पेश किया आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया होगा। इस तौर तरीके से रोसिता जी आप सभी को सदियों से सेवा करती आ रही है। आज का प्रोग्राम तो बड़ी मजेदार था ना। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद रोसिता बहन जी, और आपको भी हमारे फुल टीम की तरफ से एक शुभ शाम, हैप्पी हैप्पी वैन वीकेंड और हैप्पी हैप्पी संडे। अगर आपके घर पे जश्न मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा है तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, है तो किसी की जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो। विवाह संस्कार तो बीत चुका है ना, कंगन भी शायद छूट चुका होगा ना। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं, नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शयन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फील स्टेरक्ट मैथ यू सिटी, जो बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। एनी तो फरखते हैं बंधु, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फनार्थ बीटर्स का आप कामयाब हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, फरहान खान सुदोर बंधु। और हो सकता है कि आप आज या कल परसों कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ ट्रस्ट और जोर तोर से बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना बंधु, तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो, मेहनत तो है दौलत का यारी यारो, दत है बोतो आते तेईस स्कूल फरालो पे वैरक, en ook af en toe zeggen dat wij ook door de radio heen, dat hebben we toch allemaal geleerd, hè? Never give up, Bradanangasita. Never give up, Bradanangasita. Zo lobby lobby and blessings to all of you, en natuurlijk bedankt voor het luisteren.
जिसमें प्रवेश हुआ हमारे फूल टीम की तरफ से स्वागतम फेन फैकन्सी खनित फन उन्स प्रोग्रामस।

Blijf luisteren en je gaat het zeker leuk vinden. It's a promise. Maar hoe is het tijdje op deze kutjorke bidees? Ja, trappe, ja, hij op zoek naar meer warmte. To aapkoop hier maar een voeltiemke terug zeg. Sjoep, ja, tra. Fijne vakantie. Tamam luk, zo'n tijf aan in de stan hier. Je doek op een vakantieadres. Internet geleerd waar is dat mogelijk. To abisonium loco op uw laptop, smartphone of tablet. Zo bent u en blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk Hamari Den Haag Sherka, de one and only Fahun Hindustani Radio. 24 hours at your service, Migudu. Dus uit uw programma kan surwaat, dus dat nieuws in mijn kartje aan raam. Hoe is ik tjaal, zwak ze brauwe, bijan, kezaad uit de film in elkaar. 1972, composed by the brothers Kalyanji Anandji. Aur hamisha ki traap se bhi sunan ke jaar hai hai suru ka badshah the king of melody Padma Shri Muhammad Rafi sahab ji aur wo sunayenge aap sabhi ko hamisha ki tarah sathiyo remember this song ki aaj galo muskuralo mehfile sajalo kya jaane kal koi saathi chhoot jayega जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर ही है कब टूट जाएगा है कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना इसीलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं और सदा भी कहते रहेंगे कि हेल्प टू नास्ट ऑल दैट लीफ हैं वैसे मेंस दार फॉर कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तो स्टे ट्यून ऑन आप ही का तो आवाज है जनता का आवाज है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है बीच में कुछ ज्ञान की बातें शेर शायरी भी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक सुपर हैप्पी हैप्पी वीकेंड तापमान देन हाशर का जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो तकरीबन 19 और 20 डिग्री सेल्सियस का दरमियान था तो मौसम भी बहुत ही हसीन है थोड़ा बहुत धूप भी निकला है तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना अपने लोग है जिस पे हमें नाज है और होना भी चाहिए रफी साहब जी

आवाज दामाद जी क्या दिल खुश कर दिया द किंग ऑफ बैठक गाना के ब्यूटीफुल आवाज में द वन एंड ओनली मैस्ट्रो संदीप बदलू जी के जबरदस्त सॉन्ग आप सुन रहे थे एंड तरेक्ट है ये सतोक द किंग ऑफ बैठक गाना फ्रॉम हॉलैंड एंड दैट इज मेन पर्सनलिक मीनिंग तो साथियों द किंग को आप सुन चुके हैं ना अब लाते हैं द लायन ऑफ बैठक गाना द वन एंड ओनली योर स्टारो का स्टार मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का बिल्कुल नया सॉन्ग जो आजकल दुनिया भर पे हलचल मचा रहा है हमार मछिनिया भैया बोले डॉबल्स के खवावे क्या बात है चिखले कभी तो लोग डॉबल्स जो चिखिए मैं खले फिर कॉकते हैं फिर स्लाफ क्या पर चिखली भैया जितना दिन हम त्रिनिदाद में रह ली और तुबेगो रोज हम सीकर तीन डॉबर्स पैदा खात रह ली और साथ ही साथ कर को चोबी पिया होते ही शहरी स्मार्क रासन नाम के शहरी स्मार्क मुझे लिंके जो प्रोबेर देवेंद्र सिंह नाथ क्या बात है चलाओ भैया नवा मशीनिया

उस तारू का उस्ताद जबरदस्त गायक हमारे ऑल इंडीज का द लायन ऑफ बैठक गाना महेस्त्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 7 मिनट बाकी है 5:30 बजने में और जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान नौजवान कलाकार फ्रॉम हॉलैंड मैस्त्रो शिवम राजाराम जी का ये साउथ अफ्रीकन इंडियन चटनी आप सुनिए। सास घरेना और भैया साबुन के मार भी होवे।

शाबाश जबरदस्त गायक, नौजवान कलाकार हमारे ऑल इंडीज का, जो काफी नाम वर्ल्ड वाइड कमा चुका है, प्रिंस शार्मिंग कलाकार, द ग्रेट माएस्ट्रो शिवम राजा राम जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग। 3 मिनट बाकी है 5:30 बजने में और आप चुन है देनहा शेर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, और जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है। एक और नौजवान कलाकार जो कुछ साल हुए है सूरीनाम देसा से आया और आकर कितने को यहाँ टोपी पहना दिया, ऑलराउंड कलाकार, मल्टी टैलेंटेड कलाकार, सुजल उमराव जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आराम के साथ ही।

दो मिनट गुजर चुका है साथियों, 5:30 बजकर तो वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ विद्वानों और कुछ मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं सीतात के रूप में, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाए। अर्ज हुआ है यारो अन Chinese spreekwoord luidt als volgt: van de 10 vrouwen zijn er 9 afgunstig, dus 1 is er maar gunstig. Akimika Sri Mahagyani Albert Einstein Jineki, alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid. Winston Churchill ne kaha hai saathiyon ki democracy is the noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Heel goed. Willem Elschot ne kaha hai de wijze gaat liefst onopgemerkt voorbij. का अपना बापू जी ने, द ग्रेट महात्मा गांधी ने कहा है साथियों की, het verschil tussen wat we doen en wat we kunnen doen zou voldoende zijn om het grootste deel van de problemen van de wereld op te lossen. Major Boshart ne kaha hai saathiyo, hij was zeker een ongelovige man. Over Major Boshart ne kaha hai, God dienen is volgens mij mens dienen. Ja, zeker volgens hem. John Petit Sen ne kaha hai, het geweten spreekt, maar het eigen belang schreeuwt. Nicolas Amphor ne kaha hai saathiyo ki, de maatschappij bestaat uit 2 grote klassen. Zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben. Jules Deelder ne kaha hai, wie in het heden leeft, heeft het eeuwige leven. En de laatste van vanmiddag kaha hai Sri Herman Finkers Jine. Hoe kaha hai is een hele grappige hoor. Moet u goed luisteren. Ik ben niet getrouwd. Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Tomare pri saathiyo bhi aap kuch gyan ke baatein sun rahe the. Ye aasha ummeed lekar main baaton tak बातों को आप सभी तक पहुंचाया है ये शामिल लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, घड़ी की तरफ देखता हूं तो 6 मिनट गुजर चुका है 5:30 बजकर। अगला बयान द चटनी क्वीन एंड द बैठक गाना क्वीन फ्रॉम सूरीनाम टुगेदर विद हॉलैंड का मैस्ट्रो रोहित महाबली का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आप लोग सुनिए, धीरे धीरे और हीरवा हराए गए ले रे।

शाबाश शाबाश, जो द जबरदस्त कलाकार हमारे सूरीनाम देश का, द चटनी क्वीन एंड बैठक गाना क्वीन मोती माला भोला सिंह जी, और हमारे हॉलैंड देश का माएस्ट्रो रोहित महाबली का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, फिर अक्टूबर 20 का ये हसीन शाम का प्रोग्राम, बैठक गाना का प्रोग्राम आप इस वक्त सुन रहे हैं। और देखा जाए अगला बयान, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का नौजवान कलाकार खबोर इन म्यूजिकल फैमिली, ये जबरदस्त गायक का दादाजी यानी आजा एक जबरदस्त नाटक कलाकार और जबरदस्त बैठक गाना का सिंगर भी था। आप लोग छेदी वाहन के नाम कभी जरूर सुना होगा, तो इन्हीं का उन्हीं का नवाजा है ये। मिल के सुनते हैं द ग्रेट कृष्ण छेदी फ्रॉम सूरीनाम, दहिया मोरे ले ले, बिल्कुल।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का नौजवान कलाकार कृष्ण छेदी जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। 11 मिनट रह गया है 6 बजने में साथियों। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉरन देश का दीपक कन्हई फ्रॉम द म्यूजिक फरमाशी रिश्ता का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुनिए हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं की सबकी नजरिया क्या देखते हैं।

0: श्री जॉर्जेस गायक हमारे ऑन डिस का दीपक कन्हई फ्रॉम द म्यूजिक फरमासी रिश्ता, उन्हीं के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। धीरे धीरे पहला अध्याय खत्म होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का आइडियार 50, 60, 70, 80, 4 decennia long बैठक गाना के एक महा महा गुरु माँ द ग्रेट द्रौपदी जी के याद में आप ये सुनिए।
1: अरे

Live recording uit de jaren begin 70. Mashour Ormahan, Kanewali Amare, Suriname Deska uit de jaren 50, 60, 70, 80. Baithak Ganaka Gruma. The one and the only Droupadi ji ke beautiful awaaz aap sun rahe the. To saathiyo, waqt ho gaya hai abhi aap विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 4 अक्टूबर 2026 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम सरनामी संगीत का आप सुन रहे हैं। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोशल लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतीलक बदंग फॉर हेट लॉयस्ट्रन। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 2 मिनट गुजरने वाला है 6:00। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से सेदाम सर्विस गारंटी।

Debbie, Jan, Carrie, bellen van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren op de volgende telefoonnummers. Kantoor 070-365-2247. Of Studio Qatar kan nummer 070-362-2077. Job hier radio kan kam huna, denk aan van Hindustani Radio. U bent van harte welkom. Is het er om loke barme? चर्चा करते रहना यारो, रिक्लाम बनाते रहना, अगर हो सके तो थोड़ा भी बहुत ढंढोरा भी पीट देना ना हम लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है। दिनों के लिए फनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En niet te vergeten, hè, we hebben ook onze eigen karaoke team. En elke laatste donderdag van de maand vanaf 6 uur live karaoke op de radio bij Fahun Hindustani Radio. Dus luisteren, hè. Oh, zeker, volg onze social media en ook van onze omroepers toe. Zeker, Annemarie Dinome, dekenge ki, waar wij live voor u gaan optreden. En daar bent u ook van harte welkom. Wabi Jalsi Jalt, Fahun Hindustani Radio ka member bane. Aur ye jo chota sa, mota sa, Fahun Hindustani Radio ka parivar bante ja rahe, aap bhi aakar usme shamil ho jaye. Sabhi jankari iske bare mein aap taar kare op 070-365-2247. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider van Fahun Hindustani Radio, the one and only maestro Johnny Number One. En ook u bent van harte welkom. 070-365-2247. Waar ik hem moet aan dusra adhyay sarnami sangeet ka lekar chalte hain aap sabhi ko. और एक जबरदस्त सॉन्ग रख चुका हूं प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए, संदेश से वन लव मिक्स बाय शनिल एंड मारियो फैलरी, शो टाइम 20 सेशन 20 डायरेक्ट फ्रॉम सूरीनाम।

Yeah, hey, Jabardast song by Shanil and Mario together with Valerie from the Music Pharmacy Showtime 2020. बारह मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:00 रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जो तौर से सरनानी संगीत चल रहा है। अब साथ ही साथ सरनाम के बात जब हो रहा है ना, तो लाते हैं हॉलैंडीज का जबरदस्त गायक मैस्त्रो सागर मलिक जी का ये सरनामी भैया ये गीत आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। Suriname, close to my heart.

एकदम भैया सरनामी भैया सुना रहा था आप सभी को मशहूर गायक हॉलैंडेज पाकिस्तान का दिग्विजय सागर मलिक जी। अगला बयान अभी तो सरनामी भैया सुना है तो अब आते हैं आप सभी को सुनाने को स्टीफन भाई ताली बोले भैया अब सुनो सरनामी गर्ल के कहानी।

Suna blog kuqë sërënami gërë, ke bareme Gjabërgjës gajek Stephen Bajtali ke beautiful avans mi. E kis mërët guzër që ka hajsa atjo që i bëqëkër Qun hej, api ka favorite radio station from Den Haag shër Davane në orifa unë të shtani radio 24 hours at your service mi gudu. अगला बयान एक जबरदस्त कहानी सुनिए हम लोगों का जान से प्यारा देश द ग्रेट सुरीनाम का कि एनत क्रोथोर सुरीनाम रंगीन है कह रही है फरानाज चिरागली देवन द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम सुरीनाम शायर और रिश्वी मिलके सरनामी हिंदी पॉप में ये नगमा लाइव गाया गया था और दिस ओक इन द प्राइस गेवालन मिल के सुनते हैं एन मोई नंबर एन हेयर मोई कंपोनेट डोर डेफिन

Written by Steve Girdhari, music set by Maestro De Veen, जो हमारे सुरीनाम देश का श्री देवेन गोविंद जी एक जबरदस्त कंपोजर है. दो मिनट रह गया है 6:30 बजने में. अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, बिल्कुल नया नया निकाला है. द डांस एंड द बोलिंग मास्टर मैस्ट्रो सुदेश बीले को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं उनका बिल्कुल नया सॉन्ग. रीअरेंजमेंट एंड कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या. यारो मेरा साथ नी

beautiful song by Maestro Sudesh Chamile, the swingend bowling master uit Gouda. Music arranged and composed by Maestro Ashok Ajodhya. गया है दो मिनट तीन मिनट गुजर चुका है साढ़े छह बजकर तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना.

उससे क्या है यार, और वो कहता है कि सही कहा ना, जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, मुलाकात करते रहो एक दूसरे से, मुलाकात हमेशा और बात भी करते रहो एक दूसरे से, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। See if and right people and good men lead as follows. There are very few people who listen to you. There are very few people who listen to you, who understand you and understand you with understanding. And they are your rightful people. Remember that, my bro.

एकदम क्या बात है, जबरदस्त गायक हमारे डैन हंक्शर का फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी जेंटल मिस्टर ट्रेबल फाया चटनी मिक्स आप सुन रहे थे। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक एक बार आप सुन रहे, एक बार आप उसको आज ही सुन चुके हैं, लेकिन दैट वाज इन एन अंदर फैर्सी बैठक स्टाइल en alles doener hoor, all around. Geef hem een chutney, een soca, een soul, een kaseko. Hij zegt het uit zijn duimpie. De alleskunner maestro Sujal Umrao kan je soul vibe toe aap sunje. Muziek by Irfan.

beautiful soul vibe too by Maestro Sujal Umrao and the music arranged by Maestro Irfan. तेरह मिनट बाकी है शांत बजने में साथियों, अब लेकर चलते हैं आप सभी को हम लोगों का सूरीनाम देश का राइस डिस्ट्रिक्ट निकेरी में, जो सभी के दिलों में है। निकेरी हमार दिल में है, द हार्ट ऑफ निकेरी। अनसरनामी फैशन क्रिएट और आई टेक्नोलॉजी कुंस्मात इंटेलिजेंसी।

हमार दिल में द हार्ट ऑफ निकेरी सरनामी फैशन क्रिएट दौर आई टेक्नोलॉजी कंस्मार्ट इंटेलिजेंसी म्यूजिक। 8 मिनट बाकी है इस 8 बजने में, तो आज के हमारा दूसरा अध्याय सरनामी संगीत में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे जबरदस्त गायक हॉर्न देश का खबर है पाकिस्तान एंड हेलियम in Nederland gekomen over zijn zindagie vanaf zijn 19e jaar tot heden altijd gezongen voor Den Haag Cercade Music Formatie Strangers. Zindagie ka safar bij Bobby Jacob.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 4 अक्टूबर 2026 का हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 2 मिनट गुजर चुका है 7:00। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं।

बैंक बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। ये तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ और सदा कहते ही रहेंगे कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को होने देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी आप ये टेलीफोन नंबर जरूर नोट कर लेना क्योंकि आज नहीं तो कल जरूर आपको काम लगेगा। कंतूर का तार का नंबर है 9735626277 फिर तक और स्टूडियो का तार का नंबर है 9735626277। जो भी रेडियो का काम होना देन कन्फर्म हूँ हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना और हो सके तो थोड़ा से ढंढोड़ा भी पीट देना क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी हैं ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Zoals jullie al vaker al gehoord hebben, hè? Elke laatste donderdag van de maand live karaoke vanaf 6 uur 's avonds bij Fahon Hindustani Radio. Dus altijd luisteren. Aur dik ha jaye ki bhi hum log ke wo jo karaoke ka team hai na, een stuk of 7-8 omroepers en omroepsters die live voor jullie gaan zingen. Dus volg onze social media van Fahon Hindustani Radio en ook van onze oproepers. Dan gaat u zeker binnenkort zien waar wij voor u live gaan zingen. En dan bent u ook van harte welkom. Doab hi jult si jult Fahon Hindustani Radio ka member bane au roko banai. Bellen van maandag tot vrijdag. Tijdens kantooruren op 070-365-2247, dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider van Fahon Hindustani Radio, the one and only maestro Johnny Number One. Aurun sehap dil khol ke baate shaate kar sakte hain. 5 minutes guzar chuka hai saathiyo, 7:07 kuch nene super hit songs आप सुनिए uit बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। ook heel veel wordt er gewerkt met AI technology daar, kunstmatige intelligentie. En ik heb een leuke voor jullie geselecteerd, बॉलीवुड reggae, दिल से आप सुनिए ये मधुर संगीत जो क्रिएट किया गया है, दिस है दिस gemaakt door misschien één persoon door middel van computer, AI technology, die ze hem ook Nederlands kunnen boeten, kunstmatige intelligentie. Maar het klinkt prachtig mooi.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग रंग लग गया इश्क का. म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय मास्टरो रोचक कोहली एंड द सॉन्ग इज रिटन बाय कुमार. अब क्या आवाज मोहित चौहान जी का. 16 मिनट व्यतीत हो चुका है 7 बजकर और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर. रविवार का रात का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. एक और जबरदस्त गायक को लाते हैं प्रोग्राम में, काफी दिनों कुछ नहीं सुनाया. द ग्रेट सिंगर मोहम्मद इरफान उनका साथ दे रही है अर्पिता मुखर्जी. महान संगीतकार हिमेश रेशमिया के सांच पर सुनिए ये सुपरहिट सॉन्ग दर्द दिल की दवा. एक अति सुंदर द्वैत. एंजॉय द म्यूजिक.

की दवा स्टीरियो फैशन आप सुन रहे थे। महान गायक इस जमाने का द ग्रेट मोहम्मद इरफान और उनका साथ दे रही थी अर्पिता मुखर्जी। म्यूजिक कंपोज अरेंज एंड रिटन बाय आल्सो द अल्फाजे द ग्रेट हिमेश रेशमिया जरिए। 8 मिनट बाकी है 7:30 बजने में साथियों, तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त दिल को छू लेने वाला नगमा है, धड़कन में तुम हो अल्फाजे तो आपको इशारा कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। महान फनकार इस जमाने के जो ये बयान को खुद लिखा है, कंपोज किया है और खुद गाया भी है, सागर बैरागी। Remember the name साथियो, it's a very new song from 2026।

कि दूरियां सिमट जाए हम और तुम मिलकर एक नया जहां सजाएं।

वंडरफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, धड़कन में तुम हो, लायोडिक्स फोकस एंड कंपोजिशन बाय सागर बैरागी, म्यूजिक आल्सो बाय सागर बैरागी, अ ग्रेट आर्टिस्ट। 2 मिनट बाकी है 7:30 बजने में साथियों, तो अगला बयान कुछ फ्यूजन, इंडिया से फ्यूजन म्यूजिक आप सुनिए, खसोंगदौर सूरज वर्मा, संजय वर्मा एंड राधिका कुमार, म्यूजिक बाय इंडो फ्यूजन। बोल हैगा ये संगीत का थेरापी फॉर द सोल, सूफी क्लासिक मैशअप आप सुनिए।

बात है ब्यूटीफुल बैठक म्यूजिकल थेरेपी फॉर द सोल इंडन इंडो फ्यूजन म्यूजिक सूफी क्लासिक मैशअप आप सुन रहे थे। गाने वाले सूरज वर्मा, संजय वर्मा एंड राधिका कौर। छह मिनट गुजर चुका है साथियों, 7:30 बजकर कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज क्या है यारो मेटन फ्राखतेकन, प्यार क्या है, और उसके बाद लिखे है लोगों ने कि प्यार इम्प्रेशन से लेकर डिप्रेशन तक का सफर है, रिलेशन से लेकर सिंगल तक का सफर है, चैटिंग से लेकर ब्लॉक तक का सफर है, सुकून यानी सुकून से लेकर दर्द तक का सफर, आप से तुम और तुम से तू तक का सफर है, वही प्यार क्या है होता।

0: आखिरी शेर साथियों, कर्म सेज, यानी कर्म सेज, अ पर्सन हु ट्रूली लव्स यू विल नेवर लेट यू गो और गिव अप ऑन यू, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज। वही तो सच्चा प्यार होता है यार, मार दैट हैव्ड ओक सन ग्रेंसन है। ले तो 20 मिनट बाकी है साथियों 8 बजने में। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और जबरदस्त गायक आप सभी को सुनाने को जा रहा है, द ग्रेट अरमान मलिक, खबर इन एन हेल म्यूजिकल फैमिली, ग्रोट फादर, ओम्स फादर, अलमाल सांगर्स एंड कॉम्पोनिस्ट इन द फैमिली। तो अरमान मलिक जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुनिए, कहो तो, कंपोज एंड अरेंज बाय अंकुर एर फाटक एंड द अल्फाज़े इज फ्रॉम सचिन उर्मतोश।
1: ये तो वही है श्राप वाली,
2: भाई ये तो हर जगह प्रकट हो रही है, श्राप है या मैनिफेस्टेशन चल रहा है।

क्या बात है अति सुंदर बयान है। श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया है भी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से महान गायक इस जमाने का द ग्रेट अरमान मलिक जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। कंपोज एंड अरेंज बाय अंकुर एर पाठक एंड द सॉन्ग इज रिटन बाय सचिन उर्मतोष। बयान एक जबरदस्त कलाकार का कंपोज अरेंज एंड गाया हुआ ये अति सुंदर बयान है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर गायक प्रोड्यूसर मैस्ट्रो आर रहमान जिसका और सिनेल नाम है दिलीप कुमार है। स्लाटर फन खलूफ रंदर्त is in een hindoe familie geboren nadien bekeerd tot de islam aur itna bade bade kaam kiya hai ye mahan sangeetkar khaas karke hollywood film industry mein ye bhi kafi naam kamaya hai was ook een keertje genomineerd as the best music director van de film in een bollywood Slumdog Millionaire ke bare mein aap sune hai was ook had hij ook de award daarvoor gekregen. Aur itne jabardast bade bade kaam kiya hai hamare film industry Bollywood ke liye to heel Asia mein bade bade sangeetkaron ne aur mahan mahan gyaniyon ne sangeet ke bare mein jo likhte hai bhi journalist wagaira wagaira ye inko वो नाम से टाइटल उनके माथे पर चपका दिया कि है इज द स्वर्त मोसार्ट फ्रॉम एशिया ही इज द ब्लैक एमडेयस फ्रॉम एशिया। दिस ओवर हेड प्राट वे दान दैट इज एन हेल ग्रोट एयर एंड व्हाट एन प्राइस हैव दिस मैन अलमाल अल गवोनन द फिल्म द अप टू नोमा। Zijn nieuwe song Divana Divana, gecreëerd, gecomponeerd door hemzelf en gezongen ook door hemzelf, geschreven door Izzamanika Jabardist, leek ik Irshad Kamil. Milkezoente hij. What a great composing by maestro A.R. Rahman.

क्या बात है, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग, अ ग्रेट कंपोजिंग बाय द ग्रेट ग्रेट मैस्ट्रो ए आर रहमान। और देखा जाए उन्हीं का कंपोज किया हुआ और गाया हुआ ये अति सुंदर बयान खिसकरी फडोर इरशाद कमील आप सुन रहे थे। व्हाट अ सॉन्ग एंड व्हाट अ स्टाइल एंड व्हाट अ कंपोजर।

साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये अशोमीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये अशोमीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले वेंसडे 8 बजे में हाजिर हो जाऊंगा गीत और गजल ओथ इज गोल्ड खलिंग मैथ संगीतकार का दास्ता नामक प्रोग्राम लेकर आप सभी के खिदमत। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बाद आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया वन एंड ओनली मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा जी। तो जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ जरूर कोशिश करूंगा गुनगुनाने के लिए। और आज देखा जाए तो हसीनों का पुजारी की शूरदा के याद में लेट्स ट्राई इट कॉम्पिटिशन।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमार लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहां से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहां भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूं आपका सेवक गंगा, और कुल घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। जो लोग चुन किए मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए, आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा।

आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश, द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस। आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से। लता जी है, जी हाँ लता जी है, फिक्टोरिया 2003।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से।

न थो छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहाँ तक। ये शानदार गीत चला हमने पेश की रवि साहब और आशा जी की आवाज़ में, और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ख्याल है, प्रेम प्यार मोहब्बत में तो लोग बहुत वादे करते हैं लेकिन कभी निपता है कभी नहीं। लेकिन चलिए सुनते हैं कि एवरग्रीन किशोर कुमार क्या कह रहा है इसके बारे में।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 95% लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चले कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जब भी जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है अगर ये चलाया जाए

बस शारदा जी, बहुत देर ना समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाएं शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में येसुदास।

फिल्म चितचोर में से निकाले हैं येसुदास जी, येसुदास जी आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर जी। हाँ, रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर, बस क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म चांद और सूरज, चांद और सूरज में से सलील चौधरी के साज पर।

रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों मिल के आपको ये शानदार द्विवेद सुनाए हैं। चलिए घड़ी पर देखो, जी हाँ अभी थोड़ी समय बाकी है, तो हम पेश करते हैं ये गीत। ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, अगर हालिम सुने होंगे तो एक बार सुन लीजिएगा। एवरग्रीन किशोर कुमार।

शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उदित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊँ, क्या बात है।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक, आपको सुनाई है लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है? आप सोचिए और इत्मीनान से सुनिए, आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे कहीं प्यार ज्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना, मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। निगती फिर सिर्फ तकन 174 का ये गीत मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में। अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने, चलो मिल के सुनते हैं।

रफी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। www.pinfaunfm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

वाह, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, अगर होना था ज़रूर। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर निकली फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में, और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला, पंकज उदास ने गाए हैं, तो लोगों समझे वाह क्या बात है। लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ, मुकेश जी ने पहले गाया था और बाद में पंकज उदास ने गाया। चलो हम आपको सुनाते हैं।

पहुंच हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ न फेटा। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे, ये गीत सुनाया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुने। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

हर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। फिल्म कलंक में से निकाले हैं और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइए निकती इंद्रियन सस्तक में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए चैनल पर आप चुने जो लोग चुनकी मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है। लैला

हरिवीर आमी रुना लैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशिया, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। ये दो पंछी दो तिनके, फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

साथ यहाँ नहीं जाना कि जीना लगे, ये शानदार गीत चला और ये दुएट चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम रहेंगे रख प्लेयर में रखे माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। चांद ग्रहण में से निकाले हैं जयदेव के साथ।

0: तुम्ही ने दिल को दिल समझा नहीं है, ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन सेशन सेफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना, रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला, और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं। बहरहाल निकतीन सेफ ने नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है, और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है, लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैथ्यू मुकेश द हार्ट ड्रॉप ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में, हमने चला दी। शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते, बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म दर्द में से निकाले हैं नीघतिन एन तख तक का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश नीक दिन फाइव सही में तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फॉर 500 हिंदुस्तानी रेडियो। तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती है।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुनाते हैं ये नंबर।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ न फेटा। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

खिलते फूलों जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो, सलामत रहे ज़िंदगी का यह सफ़र, जहां आप रहें वहां बस खुशी ही खुशी हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने हमें क्यों आते हैं और सपनों का मतलब क्या है।

आज आपको जिस विषय के बारे में बताऊंगी उसका नाम है शकुन विचार। शकुन यानी जो शगुन भी कहते हैं, शकुन भी कहते हैं, और उसका शुभ लाभ भी है और अशुभ लाभ भी है। शकुन विचार अर्थ, वास्तव

0: में होरा गणित शकों का मिश्रित रूप ही संहिता शास्त्र है। कलांतर में संहिता में से दो भेद और बताए गए, शकुन और प्रश्न। शकुन का फल विश्वास करने पर ही मिल सकता है। जीव ने पूर्ण जन्म में जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं, गमन के समय पशु पक्षी उस जीवन के कर्म के पाप को प्रकाशित करते हैं, यही शकुन है। ऐसा नहीं है कि शकुन शास्त्र केवल यात्रा काल तक ही सीमित है, शकुन के अनेक आयाम हैं। घर में भी शकुन हो सकते हैं और ग्राम में भी शकुन हो सकते हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधे एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि का हर जीव प्रकृति की विचित्रता और विशेषता लिए हुए है। परंतु प्राचीन शास्त्रकारों ने काली चिड़िया, कुत्ता, कौवा, गिद्धड़ी, इन पांचों को शकुन शास्त्र में रतन की संख्या दी गई है और उन्होंने इन पांचों के सरस्वती, यज्ञ, गरुड़, चंडी और शिवदूती का अधिष्ठात देवता बतलाया गया है। शकुन उस परिणाम का सूचक है जो मनुष्य को निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला है। शकुन मनुष्य के लिए देवीय प्रेरणा है जो शुभाशुभ फल के बीज के रूप में प्रस्फुटित होती है। यथार्थ में शकुन शब्द का अर्थ नामकरण पक्षी को अक्षय मानकर ही हुआ है। कुछ अकस्मिक घटनाओं को जो किसी शुभाशुभ घटना की घातक हैं, उन्हें ही शकुन कहते हैं। सुनने वालों, ये मैंने आपको शकुन का अर्थ बतलाया है।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना ये सुरीनाम के महान गायक कलाकार श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। अब शकुन हो तो क्या करें, यात्रा करने वाले व्यक्ति को यदि गमन करते समय कोई अपशकुन हो तो लौटकर हाथ पैर धोकर जल का आचमन करके किसी पीपल, बड़, गुलर अथवा आम के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए और प्राणायाम करते हुए अपने ईश देवता का मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यदि दूसरी बार भी विपरीत शकुन हो तो वापस आकर किसी दूध वाले पेड़ के नीचे बैठकर प्राणायाम करते हुए ईश देवता का मंत्र जपना चाहिए और पूर्ण यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यदि तीसरी बार भी अनिश्चकुन दृष्टि गोचर हो तो उस दिन के लिए यात्रा का त्याग कर घर लौट जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से घर से निकलते ही कोई शकुन होता है तो शीघ्र ही अपने स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है। गमन करते समय जो शकुन होते हैं, यदि प्रवेश के समय भी वही शकुन हो तो उसके बाद दूसरी बार गमन करते समय भी वही शकुन हो तो बिना विश्राम के ही बहुत शीघ्र बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इसके विपरीत गमन करते समय शुभ और प्रवेश करते समय अशुभ शकुन हो तो दूसरी बार गमन करते समय शुभ शकुन भी कठिनाई से सफलता देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। शगुन भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ अशुकुन और अशुभ शकुन। अब मैं आपको पहले शुभ शकुन के बारे में बतलाऊंगी सुनने वालों। जिस प्रकार अशुभ शकुनों से हानि, असफलता, अधिपतन आदि की संभावना समझी जाती है, उसी प्रकार शुभ शकुनों के विषय में लाभ, सफलता, सौभाग्यवर्धन आदि माना जाता है। कुछ शुभ शकुन तुरद्यानु हसदा हुसन मिले इस्तो की शकुन चंगेरा है। इसका मतलब है सुनने वालों, अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई हंसता हुआ व्यक्ति मिल जाए और इससे अच्छा शगुन और क्या होगा। सौभाग्य चिन्ह, पुत्रवती स्त्री, सुंदर स्त्री, कुमारी, स्वस्थ बालक, बनिया, पगड़ीधारी, ब्राह्मण, ज्योतिषी, विद्वान, धोबी, शिक्षक, घोड़ा, तांगा, रथ, गाय, मोर, बैल, भेड़, हिरण, कबूतर, बकरा, सांप, फलों का ढेर, फलों से लदा ठेला गाड़ी, ईख, पुष्प, तंबूल, गीली लकड़ी, दर्पण, नवीन वस्त्र, दूध, दही, दुर्वा, मांस, शराब, घी, पताका, खाद्य सामग्री से भरा बर्तन, दीपक, नगाड़ा, वाद्य, जलयुक्त, कलश, छाता, देव प्रतिमा, शुभ वचन, गोबर, शुभ समाचार, जय घोष, वेद ध्वनि, पुस्तकें, पूजन सामग्री, खिलौने, आनंददायक सामग्री, सुगंधित द्रव्य पदार्थ, खेल, वस्त्राभूषण, श्वेत माल्य सहित, मल या कूड़े आदि से भरा हुआ पात्र लिए स्त्री, गुड़ की भेली लिए हुए स्त्री या पुरुष, नारियल, छुआरे, सुपारी के लिए हुए, मिठाई, मधु, धृत पेठा लिए हुए, ध्वजा पताका, पंखा, चावल, पका हुआ अन्न, सरसों, चंदन, शंख, मिट्टी, बिना धुएं की अग्नि, कमल, रतन, पशुओं का समूह, नवीन शाक, श्वेत वर्ण, स्वस्थ वृद्ध पुरुष, ईश्वर भगत, नई भरी हुई रजाई, रंगे हुए वस्त्र लिए या पहने हुए आदमी, सेहरा धारण किए हुए दूल्हा, सांड गर्जन करता हुआ हंसता खेलता बालक, हरे पत्तों की बंदरवाल, हरी धूप, सिंहासन, कपूर जलती हुई अगरबत्ती, मछली, वीणा, काजल, भुजा, मुर्दे के पीछे ले जाने वाला खाली कलश, राख, लकड़ी, राज, कीट, कपास, खुले हुए बाल, काली वस्तु, लोहा, वृक्ष की छाल, काला तेल, चमड़ा, दाल, विष्ठा, नमक, राजा, वैश्य, भोजन करते हुए, पूजा करते हुए, गांव के बाहर जलती लकड़ी, राख, पत्थर, सन्यासी के वस्त्र, बाल, धान की तुष, हड्डी, मांस। सुनने वालों, ये सब शुभ शकुन है। अगर ये चीज़ें यात्रा करने हम जा रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये सब शुभ शकुन माने जाते हैं।

सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे। गाना सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे शुभ है तो लाभ है तो हानि भी है, वैसे ही अगर शुभ शकुन है तो अशुभ शकुन भी है। तो गीत के बाद मैं आपको बताऊँगी अशुभ शकुन के बारे में, सुनने वालों।

सुनने वालों, जो आप लोगों ने अभी ये गीत सुना वो है सूरीनाम के प्रसिद्ध गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में। अब मैं हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। जब आपने शुभ शकुन सुने, अब थोड़े अशुभ शकुन भी हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे चोर, पागल, लपट, सन्यासी, ब्रह्मचारी, रोगी, लंगड़ा, नपुंसक, काना, भिकारी, जटाधारी, क्रोधी, गधा, ऊंट, भैंसा, रुदन की ध्वनि, गर्भवती या विधवा स्त्री, धूर्त, लकड़ी बेचने वाला, नाई, सुनार, लोहार, तेली, चमार, कुम्हार, मोची, शिकारी, अस्त्र शस्त्र, हथकड़ी, अंग फड़काना, ठोकर खाना, बर्तन का गिरना, मुंडे सिर वाला, बिल्ली, बिल्ली का रोना, कुत्ता, कुत्तों का लड़ना, कुत्तों का रोना, कुत्तों का कान फड़काना, बिल्ली का रास्ता काटना, बांझ गाय, काला सर्प, काला पान, कौवा, वानर, तेल से भरा घड़ा, तेल, छाछ, काला नमक, गुड़, झाड़ू, काली बर्तन, हंडिया, रस्सी, छींक, दुर्वचन, रुधन, कूड़ा करकट, दुर्घटना, बाल छाए रहे, बिजली कड़के, दिन में तारे टूटना, मेहतार खाली, डलिया लिए हुए, नौ स्त्रियां या तीन ब्राह्मण, दो वैश्य, एक शूद्र, कोई मनुष्य चिकने वस्त्र पहने हुए, तिलक रहित ब्राह्मण, हिजड़ा या हिजड़ी, केश वहीन, अपंग, नंगा, तेल लगाए हुए रोती स्त्री, शराबी, काला आदमी, काली माला धारण किए हुए आदमी, कपाल, कपाल में खोपड़ी, जलती चिता, कांटेदार वृक्ष, भस्म, पत्थर लाता हुआ, पत्थर पर बैठा हुआ पुरुष, गधे को छोड़कर अन्य प्राणी पर योनि से गमन करें।

सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक गीत सुनाऊंगी और गीत के तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगी शकुन किस प्रकार फल देता है।

0: भेदभाव भी नहीं, वो भी आजिर बात मांगता है।
1: जीवन लाखों बरिस हमारे लाला

सुनने वालों, ये जो भी आपने गीत सुना ये सुरीनाम के मशहूर गायक पंडित स्वामी प्रसाद जी की आवाज़ में था और वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत उनके गीत मशहूर हुए सुरीनाम में। और इनकी बहन श्रीमती सम्राजी लक्ष्मण जी भी सुरीनाम और हॉलैंड की जानी मानी गायिका रह चुकी हैं। उन्होंने भी बहुत सारे गीत गाए जो बहुत मशहूर हुए सुनने वालों। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, शकुन किस प्रकार फल देता है। समूह का फल, जो लोग समूह में जा रहे होते हैं उसका विचार समूह के प्रधान व्यक्ति के अनुसार किया जाना चाहिए। शकुन निकट हो, शकुन प्रायः निकट होने पर ही फल देते हैं। बहुत दूरी पर होने वाले शकुन प्रायः फलीभूत नहीं होते। शकुन दाहिने हाथ की ओर, जो शकुन हमारे दाहिने हाथ की तरफ होने पर शुभ रहता है और हमारे दाहिनी ओर की नसा छिद्र से श्वास सूर्य स्वर चल रहा है तो शकुन का शीघ्र ही उत्तम फल मिल जाता है। इसके विपरीत बाईं ओर से स्वर चंद्र स्वर चल रहा हो तो शकुन का फल भी विपरीत मिलता है। नर शकुन, पशु पक्षियों में नर के शकुन को श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्री अथवा नपुंसक होने पर मंद फल मिलता है। विभिन्न दिशाओं में बलवान शुभ, पूर्व में बलवान मोर, मोदकी सिंह, ध्वनि पित्रा हिरण, कुकड़ा कंठ फोड़ा हाथी मुर्गा आदि। दक्षिण में बलवान क्रूर शब्द वाले पशु पक्षी जैसे कौवा रीछ कबूतर उल्लू गिदड़ी हरियल तेलगुरु सियारी पिंगला आदि। सुनने वालों, ये सब पशु पक्षियों के नाम हैं। पश्चिम में बलवान कुकुरी गाय बगुला बिलाव हंस चातक तीतर लोमड़ी खरगोश वादों का बजना कुत्ते की ध्वनि सारस आदि। उत्तर दिशा में बलवान घोड़ा चूहा कोयल नीलकंठ शंख कुटुकू बढ़िया हिरण चातक पुण्य वचन घंटा सिंह की ध्वनि आदि।

मंगल अरु इतवार दिन और शनिश्चर लेन चरकारज को मिलते हैं सूरज के दिन तीन। तीन दिन सुबह प्रातः उठते समय सूर्य का दायां स्वर चलना चाहिए। उठने से पहले अपनी दाई हथेली को 5 बार चूम कर इससे अपने दाएं अंगों को स्पर्श करके सर्वप्रथम उठने के लिए अपना दायां कदम पहले भूमि पर रख कर उठें। बाकी दिनों में चंद्र स्वर बाई हथेली तथा बाएं पांव का प्रयोग करें। यह श्रमशाली और प्रसन्न रहते रहने का एकमात्र रामबाण है। सुनने वालों, आप तो सब जानते होंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम से ना उठें, पहले हम अपना दायां पैर आगे रखें, फिर हथेली को चूमें और फिर सारे अपने शरीर को उससे स्पर्श करें। तो ऐसे हमें उठना चाहिए, एकदम भाग कर नहीं उठना चाहिए। नीचे ऊंचे शकुन, निकट और नीचे हुए शकुन क्षेत्र फलदायी, ऊंचे और दूरी पर होने वाले शकुन विलंब से फलित होते हैं। सूखे पेड़ पर शकुन, वही पक्षी यदि सूखे पेड़ पर शकुन देता है तो अपशकुन फलदायक होता है। महल मंदिर पर शकुन, जब महल मंदिर मंगल द्रव्य अथवा किसी रमणीय स्थान पर बैठकर कोई पक्षी शकुन देता हो तो रस, दूध, फल, मधु अथवा पुष्प युक्त वृक्ष पर शकुन देता हो तो शेष फल मिलते हैं। दिन रात्रि के शकुन, दिन के शकुन अपने काल में ऊंचे स्थान पर बैठे हो, रात्रि के शकुन जल के समीप बैठे हो तो बलवान होते हैं। स्त्री से पुरुष बलवान, प्राणियों में क्रमशः नपुंसक से स्त्री और स्त्री से पुरुष बलवान होता है। गांव में वन के शकुन का होना और वन में गांव के शकुन का होना, रात्रि में दिन का शकुन होना और दिन में रात्रि के शकुन का होना गारे नहीं है। सुनने वालों, अब मैं आप लोगों के लिए गाना चलाती हूँ, आप सब गाना सुनिए।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने जो ये गीत सुना, ये गीत था सूरीनाम के मशहूर गायक श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, नदी के दूसरे किनारे पर शकुन। रति मुक्ति, रोग पीड़ित, त्रासित, झगड़ा और मांस की अभिलाषी, नदी के दूसरे किनारे बैठे पशु पक्षियों के शकुन भी घारे नहीं होते। आठ दिशाओं के 32 भेद, पूर्व और अग्नि कोण के बीच कोषाध्यक्ष, लोहार, तपस्वी, अग्नि कोण तथा दक्षिण, कारीगर, भिक्षु, नंगी स्त्री, दक्षिण तथा नेत्रस्थ, हाथी, गोप, धार्मिक लोग, नेत्र तथा पश्चिम, उधम स्त्री, प्रसिद्धा स्त्री, चोर, पश्चिम तथा वावेवी, कलाल, चिड़ीमार, हिंसक जीव, बायव तथा उत्तर, विष घातक वाले तथा इंद्रजाल जानने वाले, उत्तर तथा ईशान, धनवान, ज्योतिषी, माली, ईशान तथा पूर्व, वैष्णव, चरक, बौद्ध भिक्षु, घोड़ों की रक्षा करने वाला, आठ दिशाओं में राजा, राजापुत्र, सेनापति, धनवान, जासूस, ब्राह्मण, हाथियों के समूह का स्वामी, पूर्वादि चार दिशाओं में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, पुरुष शब्दवाचक तथा स्त्री संज्ञक, बाई ओर से शुभ, गिद्धड़ी, पातकी, कलाकार, छछुंदर, चपकिया, शगरी, कोयल तथा पुरुषवाचक पक्षी, दक्षिण में शुभ, बंदर, छीक मृग, मोर, छिरकट, रोरो मृग, बाज, स्त्री संज्ञक, नाम लेना, दर्शन करना, अग्रभाग में शब्द करते शुभ, बकरा, मोर, कीर्तन, सम्मुख आना अशुभ, नेवला, नीलकंठ, गिरगिट,

जो आपने गीत सुना है, ये गीत श्रीमान दयाराम जी ने और महेंद्र गुदर जी ढोल पे थे, श्रीमान महेंद्र गुदर जी हारमोनियम पे थे दयाराम भाई, और ये हॉलैंड के इतनी मशहूर जोड़ी कि सब इनको जानते हैं, जैसे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी, एक के बिना दूसरा अधूरा था। समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: తుండా మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభ నిర్విధినం కురుమే దేవా సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా హూ అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసి నా కిసి రూప మే శ్రేష్ఠ హోతా హే ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠతా కో हार्दिक से नमन करता हूँ। ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब फिर एक बार उपस्थित है स्टूडियो में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। आज के कार्यक्रम में पनेल के पीछे बैठे हुए शांता खेमई जी और दूसरा ओर बैठे हुए बबली आसरा जी और तीसरा ओर बैठे हुए शीला जी जो आज हम लोग के साथ पहला बार स्टूडियो में उपस्थित है। तो शीला जी आपको बहुत बहुत से हार्दिक से स्वागत किया जाता है और अभी तो और बातचीत होएगा पर शांता जी क्यों ना और एंट्री हो जाए तो हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी हाँ जरूर से। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। ये जाने पहचाने शब्द है तो जाने पहचाने भी यहाँ है। आपको हार्दिक से स्वागत है ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में और स्वीकार कीजिए यहाँ से प्यार भरी नमस्कार शांता जी का। शांता जी की
0: कुछ पुलिंग स्रीलिंग में तो हो ही जाता है ना,
1: अक्सर हो जाता है।

Oh, namaste po, Uche. आप सभी लोग को मेरा नमस्कार पहुँचे, बड़ों को सबको पाई लगी, छोटों को मेरा राम राम और खुये नाफन।

0: अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया था, कवच, कुंडल, सोना, चांदी, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में भूखे क्यों रह गए? क्योंकि एक ऋण था जो उन्होंने कभी नहीं चुकाया था, और वो ऋण आपके ऊपर भी हो सकता है। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनके सामने अमृत और भोजन नहीं बल्कि सोना और हीरे थे। भूख से तड़पते कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा,
1: मैंने अपना पूरा जीवन दान में लगा दिया, कवच, कुंडल, सोना, चांदी सब दे दिया ताकि कोई भूखा ना रहे, और आज मैं स्वयं स्वर्ग में भूख से तड़प रहा हूँ। ये कैसा न्याय है देवराज?
0: देवराज इंद्र ने कहा,
1: अंगराज, ये सच है कि तुमने जीवन भर दान किया, लेकिन हर मनुष्य तीन ऋण के साथ जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहले दो तुमने चुका दिए, लेकिन तीसरा यानी पितृ ऋण खाली है। तुमने अपने पितरों को कभी अन्न और जल अर्पित नहीं किया, एक बार भी उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा।
0: लेकिन कर्ण का उत्तर भी उतना ही सच था। उन्होंने कहा,
1: मैं श्राद्ध कैसे करता? मैं तो सूत पुत्र बनकर जिया, मेरे माता पिता तो राधा और अधीरथ थे। मेरे वास्तविक वंश का ज्ञान मुझे मृत्यु से कुछ क्षण पहले हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन हैं।
0: इंद्र ने कहा,
1: उचित कहा तुमने कर्ण, लेकिन तुम्हारे पितर आज भी तुमसे अन्न और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वो तृप्त नहीं होंगे तुम्हें भी तृप्ति नहीं मिल सकती।
0: कर्ण ने अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगा। इंद्र ने कहा,
1: ठीक है कर्ण, मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूँ। जाओ अपने सभी पितरों को तृप्त करो और पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ।
0: पृथ्वी पर आकर कर्ण ने सबसे पहले अपने पिता सूर्य देव को अर्घ दिया, फिर अपनी जन्मदात्री कुंती और पालक राधा और अधिरथ का तर्पण करते हुए कहा,
1: आप सभी तृप्त हों और मेरे वे सभी पूर्वज जिन्हें मैं जानता हूँ या कभी जान ही ना पाया, आज आपका पुत्र कर्ण आपको अन्न और जल अर्पित करता है, इसे स्वीकार करें और मुझे इस ऋण से मुक्त करें।
0: इन 15 दिनों में कर्ण ने हजारों भूखों को भोजन कराया, हर एक दाना अपने पितरों को याद करके अर्पित किया। स्वर्ग लौटने पर कर्ण के सामने सोने चांदी की जगह भोजन परोसा गया और उसी क्षण उनकी भूख शांत हो गई। लेकिन असल में ये भूख अन्न की नहीं थी, ये भूख कर्तव्य की थी। कर्ण को दिए गए वो 15 दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। वही 15 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। हर साल ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं, और श्राद्ध केवल एक पूजा नहीं है, ये अपनी जड़ों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो आप इस पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए क्या कर रहे हैं?
2: अब यही बात तो सबसे मूल्य है कि आप अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में क्या करते हैं। तो सुनने वालों, आज हमारे साथ हमारे सहयोग दे रहे श्रीमती शीला जी, और शीला जी जो हमारे सीनियर के और अनेकों स्थानों पे कितना काम करते हैं। तो शीला जी, आपको हार्दिक से स्वागत एक बार फिर, और आप जो हमारे सीनियर तनी बचाए के बोलक पर है ना, बुढ़ पुरनिया।

0: बोलिए पुराना भाषा में तो अपना चली,
1: अपना चली।
0: हाँ डांट दे शांता जी,
2: कहाँ सीखे क्या है?
0: पर हमारे जो औदर है ना,
1: औदर है
0: तो औदर के लिए आप बहुत कुछ करते हैं हॉलैंड में, और उस अंतर्गत में आप ऐसा क्या है जो, क्योंकि ये बात कहे जाते हैं ना आपके मुख से मैंने सुना है, पर हम औरों के मुख से सुने हैं कि शीला जी जब पेंशन से चल जाए तब क्या होगा। दूसरे इवेंट हेल भी सुंदर इवेंट सो एक्टिव बेसिक मैथ ऑन से औदरन, ऐसे कहने के तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने अभी हाल ही में एक जगह गए जहां पर हिंदुस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और शांता जी भी वहां आए थे, जॉनी भाई भी वहां थे, और हम सभी कुछ न कुछ करते हैं, कभी शांता जी जो और गीतों का और लेस देते हैं, तो कहीं जॉनी जी जो और नाटक को लिखते हैं और प्रेजेंटेट करते, तो हम लोग का जान पहचान वाले ढेर सारे हैं। पर कहने के तात्पर्य यह है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ जाते हैं जहाँ औदरन रहते हैं, डक फॉर लाइफ आदि, तो उस अंतर्गत में आपके हम लोग को कुछ सुनाइए।
1: वहाँ जो आते हैं ना वो अपने जो साथ है सभी लोग अपने लेफ्टाइट के लेफ्टाइट खनोते हैं सभी लोग ना, जो घर पर रहते हैं और सलफस्तानदख रहते हैं, आते वहाँ पर अपना दिन बिता करके दाख उपफांग में दाख एक्टिविटाइट करके अपना घर फिर चला जाता है सभी लोग। वो लोग के बहुत ज़रूरी है कि घर पर वो खाना ना पका सकते हैं, वहाँ सब घर पर अकेला भी ना रह सकते हैं दिन भर, इसलिए वहाँ पर आते हैं सभी लोग कि आ करके अपना जितना हम लोग के वहाँ एक्टिविटाइट बा, हम लोग एक्टिविटाइट करेला सबके साथ हो करके वहाँ, तब सब कोई शाम को घर पर चला जाता है, वहाँ वो लोग के दिन ऐसे बहल जाता है।
0: कहने के तात्पर्य यह है कि हम जब हमारा पेंशन हो गया, हमें बुढ़ापा भी थोड़ा आ गया, फिर भी कहना नहीं चाहता हूँ शांता जी पर कह देता हूँ, पर हम लोग के लिए दाख बस्तेदिंग हॉलैंड में ये सब चीज़ बनाया गया, और ये दाख बस्तेदिंग जो है देखो अनेकों अनेकों शहरों में होते हैं, हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं चौताल सुनाने को, तो कहीं जाते हैं रामलीला खेलने को, और सब जगह हम लोग देखते हैं कि हाँ सभी जगह ये सब चीज़ें होते, पर इवेंट इन फंड मौत और फंडित जो आजकल ऐसे हम लोग के, हम लोग सौभाग्य कि आप ऐसा चीज़ बना रहे हम लोग के लिए, और हेल भी सुंदर दातु दूत। शांता जी इस पे आप क्या, क्योंकि आप भी कभी काल के कभी योगा तो कभी संगलेस इधर उधर औदर के साथ बेसी रहते हैं, उस पे आपके क्या ख्याल?
2: आपने एक शब्द इस्तेमाल की है बुढ़ापा और गरीबी। बुढ़ापा मेरे अनुभव से बुढ़ापा और गरीबी लोग, मैं कहती हूँ उसको कहते हैं जो आप जब आप क्या आप जो मोबाइल नहीं रहोगे तो आप बूढ़ा हैगा और गरीब है। जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं, जब तक चाहे 80 साल को हो या 90 साल को या 100 साल को हो, जब तक आप अपने आप में कुछ कर सकते हो तो आप धनवान हैं, आप अमीर हैं, आप बूढ़ा ना है और आप गरीब ना है, ऐसे हम देखें तो उम्र जा हैगा। और जहाँ पे हमारा शीला जी, हमारे शीला जी वहाँ पर सेवा करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे बुजुर्ग जो आते हैं वहाँ पे भी ढेर है जो मोबाइल है,
1: सही बात,
2: हाँ मोबाइल है, पर घर पे अकेले रहने के कारण और इंसान है के कारण
1: अकेलापन जो है, अकेलापन बहुत अपने के महसूस करता है, इसलिए वहाँ आते हैं।
2: हाँ।
1: और वहाँ पर तो अपना अपने लाइफ टाइप के साथ जो खनोते हैं सबके साथ मिल के रहता है, तो वो लोग बहुत कुछ बातचीत करता है अपने में,
2: सब पुराना यादें जो
1: पुराना यादें सब आते हैं।
2: और आप लोग जो निमंत्रण भी देते हैं संगीत वाले लोग के, तो वो भी आकर वहाँ पर संगीत के अनुसार भी जो पुराना गाना गाते हैं ना, तो वो सब मैं भी देखी ना कि कितने बैठ के रोते हैं। हाँ, और ऐसे है कितने तो हम देखे जो थोड़ा से कमज़ोर हो गए बोलने में, तो वो उसका शब्द जो ना बोल पाए तो उसका आँख बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी है देखो ना। मैं कहती हूँ भी कि अपना अपना जब तक हाथ गोड़ चले ना, अच्छा कार्य करो रे मेरे मालिक।
1: वो सही नहीं जानते मैं लोग, हम लोगों कहाँ पहुँचो कोई ना।
2: हाँ, जैसे आप करते हैं वहाँ पे सेवा, और ये वर्ड कौन उपहांद खदरा खदो दी आउदर या एक सी एक बेनो का पार्केर हको में एंड इकोले खास ओ यूली डोंट एम मैथ हेल
1: Samen doen we met z'n allen. Iedereen doet zijn eigen best, ja. Ja, op een eigen manier. En doen we toch. Gaan we zo goed. Deze karpaila seva ooit hebben we nodig. Deze was op keer. Doen ze nu die was op keer. Wanneer hebben we dit eigen.
2: Mijn gevoel is, Sila ji, aapke sanskar die is niet. Ja,
1: seva kunnen we niet.
2: हाँ, घर से ऐसे सीख के आए तब जो वही कहते भी ना, जो आपके थैली में है वही आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं दे पाओगे। तो संस्कार आप भी अपने घर से अपने आप, धन्य हो आपके माता पिता भी।
1: धन्यवाद है। और वो ऊपर वाली भी देते ना, जो हम लोग के बुजुर्ग है वो की जो सेवा करिए, उन लोग के आशीर्वाद से और शक्ति मिले और ताकत मिले उन लोग के सेवा करने के लिए और हिम्मत मिले है।
2: बात सही है,
1: प्रेम से करियो सब कुछ। हाँ, प्रेम के काम है ना, वो अपने दिल से चाहिए उनके करे के, अपने दिल से कुछ करियो तो उनके फल जरूर मिले।
2: बात सही है एकदम से। बबली जी,
0: बबली जी भी कुछ कहने वाले
2: थे।
0: बबली जी, भारत में कैसे होता है ऐसे, ऐसा ऐसा इंस्टांसिस है, ऐसा ऐसा दख फॉर लाइफ आदि होते है या नहीं होते?
3: आज से 30-40 साल पहले नहीं था, अब वहाँ भी ऐसी चीज वृद्धाश्रम कहते हैं।
2: वृद्धाश्रम
3: तो वहाँ पर वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम है और उसी के हिसाब से अब बच्चे भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप को। जब वृद्धाश्रम नहीं थे तो कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता था, सब एक मिलजुल के रहते थे और उसी के कारण ज़बरदस्ती कहीं अपने माँ बाप को छोड़ा तो बेचारे रोते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा। कहीं तो पैसे के लालच में पैसा ले लेते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, कहीं अपनी पत्नी की बात सुन के या कुछ और घरेलू होते हैं झगड़े वगैरह उससे छोड़ आते हैं। वो बेचारे रोते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे एक दिन मैंने कपिल कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी
2: जी,
3: तो उसमें ऐसे जैसे शीला जी दीदी चलाते हैं अपना, वैसे वो भी चलाते हैं वृद्धाश्रम। तो औरत बता रही थी जो वहाँ काम करती है, कहती बेचारे इतने रोते हैं बेचारे माँ बाप की कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है लेकिन भारत में ऐसे नहीं है, भारत में वृद्धाश्रम दूसरे तरीके से है। तो वो पता नहीं उसके वृद्धाश्रम में काफ़ी लोग थे, वो बता रहे थे तो करोड़पति खेलने आए ना, जो खेल रहे थे वो जो पैसे जीतेंगे वो वहाँ वृद्धाश्रम में दान देंगे।
2: दान देंगे,
3: हाँ जी।
2: हाँ,
3: और कितने मैं करोड़पति में देखती हूँ कितने लोग ऐसे आते हैं जो पैसे जीतते हैं वो ऐसे वृद्धाश्रम में देते हैं, कोई अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में देते हैं ऐसे। हाँ जी,
0: तो कहने के तात्पर्य ये है कि हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी जो आज है उनकर और सेवा करने का मौका मिले तो हम जीते जी उसे खूब सेवा करें ना, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
2: बिल्कुल ऐसा।
0: और बाद में एक ना एक दिन तो हम सबके जाना है, तो बाद में जब वो नहीं रहेगा तो क्या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? और हम आज का विषय जो है पितृपक्ष, पितृपक्ष अभी अनुराधा जी कुछ सुनाने वाले हैं दिल्ली से, जो इस समय कार्यक्रम में और सुन रहे हैं और हम सबको लिए और तैयार कर रहे हैं कि कुछ सुनाने के लिए। और मास्टर जी जो उत्तराचल से हम सबको संदेश सुनाने वाला है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखा जाए कि शायद बचपन में शिला जी हम लोगों ने पितृ पक्ष सुनते थे ना सूरीनाम में, और सुनते थे पर उस समय कोई कोई लोग कुछ ना कुछ करते थे और ज़्यादा तादाद में लोग थोड़ा डरते थे, डरते थे कि अरे एक बार कर देंगे तो का अब हर बार करना पड़ेगा, कैसे लड़कों करेगा, और इस प्रकार के बातें होते थे। हमें भी अभी तक ख्याल है उसके उन बातों के। फिर भी अब देखा जाए कि जब जब आपका सत्संग में जा रहे हैं, आप संदेश को सुन रहे हैं, उसमें और आगे बढ़ते गए। अब देखा जाए कि पितृपक्ष जो होते हैं साल में दूसरा नवरात्रि से पहले, वो और गणेश चतुर्थी मनाए लगने हैं, और होलांत में गणेश भगवान भी आ गए हैं ये चतुर्थी फेस्टिवल के अंतर्गत, क्योंकि लगभग 195 देशों है, और कहते हैं जहाँ हवा है और जहाँ पानी है वहाँ हिंदुस्तानी भी है, ऐसा है शांता जी की ना?
2: हाँ, एकदम बहुत
0: तो जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है वहाँ वहाँ हमारे और जो त्योहारे है त्योहारे भी लेकर हम गए हैं और त्योहारों को मनाने लगा। और खास करके सबसे मूल्य है कि हमने देखा कि होलांत में जब गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के अंदर, तो अब जो यहाँ भारत में जो फेस्टिवल दोन हो जाता है तो व्हाट्सएप बरेख बन के निकल जाता है कि देखिए भाई गणेश जी का और मूर्ति किस प्रकार से फेंका हुआ है, ऐसे हर साल होता है। नवरात्रि के बाद दूसरा फिल्म बनाते, ऐसे हर साल बनाते। पर कहने के तात्पर्य ये मैं कहना चाहता हूं कि होलांत में ऐसा मूर्ति बनाया गया मिट्टी से जो जा करके जल में छोड़ने से वो बिल्कुल गल हो जाता है। तो धन्यवाद है कि हमारे बच्चों अच्छा उनसे केंद्र दीदा माँ कन। और ऐसा अब सी तो मैंने देखा कि गणेश जी का मूर्ति जो और उसके बगल में बैठे हुए मूस उसमें पूंछ भी बना लिया, पूंछ के साथ। तो तरक्की हो रहा है हमारे त्योहारों में, और खास करके जब पितृ पक्ष है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंतर्गत में। हम पितृ पक्ष में बबली जी आप बताइए आप क्या करते हो पितृ पक्ष में।
3: पहले तो मैं ये बताती हूँ, जब हम भारत में थे तो छोटे थे तो हमारी दादी ने यानी आजी ने बोलना कि आज तुम जब स्कूल से आओगे तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, भोग मिलेगा। हम बच्चे थे, हमने कहा बहुत खुश होते कि हाँ आज खाने के लिए खीर बनेगी और वो अरे सब्जी वगैरह सब कुछ बनेगा। तो जब हम स्कूल से आना तो कहना बड़ी भूख लगी है, तो देखना हमारी बड़की भाई और मेरी मम्मी ने और दादी, तो हमारे इतना काम नहीं करते थे वो बेचारे, उन्हें घुटनों का दर्द था तो बैठे बैठे सब कुछ समझाते थे। तो देखना रोटी चावल दाल सब्जी खीर सब कुछ बना है, तो हलवा भी होता था मोहन भोग हाँ। तो अरे वो मंदिर जाते थे अपना जो कार्य करना है हमारे दादा करते थे। तो उसके बाद जब हमने खाना खाया बड़ा स्वादिष्ट है, तो उसमें एक प्रसाद आ जाता है। तो जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं भगवान का नाम लो तो वो भोग बन जाता है। तो बड़े स्वाद से हमने खाना करना, तो कहना किस लिए है, तो उन्होंने बताना जो तुम्हारे आजा नहीं हैं तो आज उनके लिए श्राद्ध किया है, तो पंडित को दान देना गुरुद्वारे में दान देना। तो ऐसे हमारी आजी ने बताना हमको। तो फिर हम बड़े हुए तो फिर तो अपने से अरे आ जाता है कि कैसा त्यौहार त्यौहार या ये भी एक तरह से ये पितरों का त्यौहार है,
2: पितरों का त्यौहार।
3: हाँ जी, तो धीरे धीरे फिर सब पता चलने लग गया कि कैसे क्या करना चाहिए कैसे करते हैं।
2: दिन पर दिन ऊपर सब जोड़ देवे है और दिखावे है बतावे है कि कौन जी है कैसे पितर ओके चाहे सेवा करे के हमारे देखे में जीते जी सेवा कर ले रहे भगवान। हाँ जीते जी मैं जितना मिले बुजुर्ग अपने आप को अपने जो सामने ऐसे हम लोग बैठे एक दूसरे के सेवा कर ले उसमें जितना सुकून मिले है तो जो पितर के से पूजे से आज है इसे चले पितृपक में जब भी पूजा करिए एक्स्ट्रा भी पूजा करिए तो दिल में इतना सुकून मिले हम बताइए। और ये पितर के जीते जी जे अपन माता पिता के दुख देवे है और वो माता पिता जो गुजर जाए दिल लाइफ में ना रहे शरीर में ना रहे तो उस पीढ़ी में दुख आवे है बाधा आवे है बाधा है जैसे कि पंडित जी बताइए कि घर में जैसे बेटा बेटी है तो उनका ब्याह भी ना हो पावे रुकावट रहे ऐसे ऐसे बहुत से तरक्की ना हो पावे तो मंगे कहूँ काम खोजे वो पे बाधा होवे और जो ये भी काम करे दिखे दुई तीन रोज में छूट गया आपके कॉलेज का नाम हो ये ऐसे कुछ ना कुछ बाधा रहे तो ओकर खातिर भी मौका मिले है जैसे आज साल में
1: आने के लिए काम करके सब
2: जी जैसे इस आयत पे है पितृपक्ष जो चल रहा है तो यहाँ पे भी सुधार कर सके है और तो कि पितर लोग के खातिर पूजा कर दे पानी दे दे श्राद्ध कर दे उस सब के भी एगो तरीका हो पंडित से जरूर से पूछो पंडित ना है तो गूगल महाराज से भी पूछ लो देख लो उसमें तो भी बतावे कैसे कैसे ढंग से करे
1: सब तरीका से सब कुछ सीख सकते हैं ना। हाँ। सत्संग में जाओ जितना सत्संग में सीखने मिलता है ना और मंदिरों में तो सब कुछ उसे भी कर सके
2: है जी शीला जी मेरे ख्याल से आज के इस समय पे जैसे ये चल रहा है तो मंदिर में भी मौका हैगा श्राद्ध के जल चढ़ावे ना
0: तिरंजलि अनेक अनेक मंदिरों में अपना अपना कार्यक्रम रखा जाता है। हाँ। और पर आप अपने घर से भी कर सकते हैं तिरंजलि दे सकते हैं और उस अंतर्गत में अभी कुछ और हम लोग सुनेंगे क्योंकि मास्टर जी जो भारत से अपना संदेश रखने वाला है।
2: हाँ।
0: तो अभी क्यों ना शांता जी
2: ने एक बार क्योंकि हमने देखे एक मंदिर 10 साल पहले के बाद में बात बता रही हूँ वो मंदिर भी जब ऐसा दिन आया था ना पितृपक तो वो भी श्राद्ध करा रहे थे जो भी चाहे अपने दिल से जाकर वो कुसा पकड़ाते थे और बताते कि ऐसे करो ऐसे करो अंजलि में वो जल ले वो जिसमें दूध और काला तिल है और सब ऐसे तो ऐसे दाएं हाथ ऐसे ऐसे क्योंकि हाथ जो है ना चार कोना है ना मिडल फिंगर के है दाएं हैगा पिंकर एंड हैप्पी दी हैंड पालम सो और चार कैची से चार देवता के समर्पण करल जा है दाएं कैची से वो पितृ और यहाँ जो मिडल फिंगर है वो देवता और
0: अब ये तो शांता जी तो बड़ा चक्कर में छोड़ दिया हम लोग को पर ये भी है इसका सबका अपना अपना मतलब है शांता जी
2: ऋषि यहाँ पे है गा जाते सेल्फ जैसे पंचामृत लेवे दैट इज फॉर योरसेल्फ
0: कहने के तात्पर्य ये शांता जी तीन ऋण हम लोग का होता है ना वैसे तो मैं एक गाना चलवाना था पर फिर भी बातें बात में समय निकल जा रहा है और तीन ऋण हमें उस पर ध्यान देना है। एक है जो ऋषि ऋण जिनसे हम लोग सीख पाते हैं ऋषि द्वारा जो लिखे गए सब पुस्तक आदि ग्रंथों जिसे हम सीख सके। एक है जो पितृ ऋण और एक है जो देव ऋण। तो ये तीनों ऋणों हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है और ये इनके बारे में हम कहाँ पर सत्संग में जाए मंदिरों आदि में तो हम वहाँ पर सुन पाएंगे। क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी और फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत आपने सुने और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शांता खेमाई जी, जो पनेल के पीछे से कुछ ना कुछ गाना खोज खोज करके रख देते हैं। कहते हैं कि शांता चलते तो पिटारा ले करके, और कौन कौन सा गीत उसमें है ये हम सबको नहीं पता होते, पर फिर भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ हर बार आते हैं। शीला जी, आप हमें बताइए ये कि आप औदरन के साथ वहाँ पर और कार्यक्रम करते हैं, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ औदर जो हमारे पुराने गीतों है, जबकि ना कि सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्योंकि पहले होते थे ना, पहले जब शादी होवे तो चाहे जोन हुए, गरीबताई हुए या अमीर है या गरीब है, फरमाइश तो दुई हफ्ता बजी,
1: वो सही बात,
0: तो उसके बारे में थोड़ा सा सुनाइए।
1: देखो जब सब बैठते हैं ना तो हम लोग पुराना गाना, पहले के पुराना गाना हम लोग धरेला यार सस्तर साठ है, तो जब उस समय के गाना हम लोग धरेला तो उन लोग के इतना उन लोग के सब यादें आते हैं ऊपर कि उन लोग अपने में इतना बात करते हैं कि ये तो मेरे मेरे जब मेरे शादी हुआ था ये तब गाना बजा था, वो हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग वो पहले पुराना के सब जितना उन लोग के यादें बा सब ऊपर आते हैं, तो उन अपने में गुपचुप करते बात करते हैं गाना, कोई कोई के हंसा देता है, कोई के रोवा देता है, आंसू निकल आते हैं भी
2: जी।
1: वो भी देख करके बहुत दुख लगता है गा भी, तो भी सोचता हूँ जो मन में है वो लोगन के वो निकाल देते हैं अपने।
2: हाँ ऐसे होता ना विशिला जी कि शरीर से कमजोर है बाकी दिमाग अबे जवान है,
1: चलते है दिमाग बहुत, हमें
2: दिमाग जवान है,
1: हमें बहुत गर्व है सबके ऊपर कि वो लोग आते हैं, वो लोग ना उन लोग के उम्र ना देखियो, जो उम्र देखियो तो सोचियो कितना उन लोग कर लेता है, तो मैं भी कभी कभी चक्कर काट लेता है अपने के खातिर, सोचता हूँ अच्छा चलो देखो ये तो भी हो गया ना, वो भी बहुत बहुत गर्व है सबके ऊपर कि भी आते हैं सभी लोग वहाँ अपना दिन बिताते हैं, बहुत अच्छे हैगा कि यहाँ हॉलैंड में ये सब
0: फैसिलिटीज़
1: वो सब मोखलक है कि वो लोग आकर के दिन बिता सकते जो अकेलापन होता है घर पर, और ये हैगा हम लोग के वहाँ पुरानियों के लिए बहुत अच्छा हैगा।
0: शीला जी, हम रेडियो बना रहे हैं और रेडियो में तो मैं नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी इसमें मैं थोड़ा से कुछ जोड़ देना चाहता हूँ, ऐसा कि मेरा जो आजी जिसे दादी कहते हैं, आजी जो एम्स्टर्डम शहर में रहते थे और वो ऐसा बना लिया था, अब देखो हम उनके जब बचपन रहे जवानी रहे तब कभी काल के कभी सच झूठ चलता है और आजी तो बैल करते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने इतना बार फोन कर कर के मुझे रास्ता पे लाया था कि इतनलक वेचित नीत अंदर फनौ आलसे का आसपरा खैर दन मुतिक बिहार खान, और ऐसा बना लिया था। आप आजी लोगों के कितना क्लाइंट केंद्र है, पर एक क्लाइंट केंद्र में से हम मेरे लिए कि हर सप्ताह में हफ्ता में सात दिन होता है, और सप्ताह में सात दिन होता, पर हफ्ता में सात दिन में से एक दिन हम अपने आजी के साथ जाते थे खाने को, और खाना दनहा खम रहते और यहाँ से लेकर जाते वहाँ पर, वो उनका ऐसा बना लिया था कि ऐसे बनाइए इच जो बनाइए दी कॉम्बिनेशन फन जो खरेख्तों है
1: पहले के हाँ खाना
0: कि हमें भी सीख गए थे खाने, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता था पर सीख गए थे खाने को। अब देखिए टमाटर जैसे बनना, टमाटर से आप चोखा बना सकते हैं, आप टमाटर से केचप बना सकते हैं, इसी प्रकार से और जो कड़वा करेला है क्या क्या नहीं बना सकते, किस प्रकार से बनाते थे और क्या कॉम्बिनेशन, कौन ब्रैनो बहुने से, कौन उर्दी के दाल से, कौन जाने तो दी कॉम्बिनेशन एंड एक फिन दैट एक आते दैट हम मिस अपने आजी के, तो दोस्तों सुनने वालों, कहने के तात्पर्य यह है कि हम ये इस कारण रखते हैं कि अगर आपके आजी नानी है अब्बे, क्योंकि एक चीज और रहा शीला जी, हम दो घंटे वहां रहते थे और दो घंटे में आजी इतना बात बताते थे पहले का अब का, दो घंटा लगातार, तो आज नहीं है, आज ही अकेले रहती थी। अब देखो यहाँ पर है ना कि ऑनलाइन वार्निंग है एंड तब ऐसा होते थे। और बबली जी कुछ कहना चाहते कर...
3: नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी जब आस प्राप्त होता था आजी से, अगर इनके काम चेंज हो जाता, कभी फ्रुकु दिन में जा पाते थे, मेदाख दिन हो जाती, तो नहीं, जब मैंने आजी को फ़ोन करके कहना आजी आज नहीं आ पाएंगे, इनकी काम चेंज हो गया, दोपहर को जाएंगे, तो आजी जैसे एक तरह से मायूस हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा कि इन्होंने आना था और आज नहीं आ पाए, तो कहना हम अगले हफ्ते आएंगे, तो कहना अच्छा बेटी अगले हफ्ते ज़रूर आना, मैंने कहा ना अच्छा।
0: कहने के तात्पर्य यह है ना कि आजी नानी लोगों दी औदरन दी फरलांगन नारन क्लेन के अंदर
1: आशा लगाए के बैठे कि हमारा लड़कन आए, अच्छा लड़कन ना आए क्लेन के अंदर चल जाए, हाँ। नाती पोता चल जाए, एक दिन जाकर के देख लो, चाहे रोज ना जाए पियो सातों दिन, बाकी हफ्ता में एक दिन जो कि पांच छह गो बा, तो उन लोगन बांट करके जाओ, देख लो उन लोग के क्या कमी है, तनी से बैठ के बात कर ले, भोजन कर ले, जैसे आप बताते हो,
0: क्योंकि उन लोग के खरेखतल से,
1: हाँ उन लोग के जो पहले के खाना है जो बनाते थे ना, पहले तो हम जानी सब बनावे बिना खाली लहसुन प्याज से,
0: हाँ।
1: और ज्यादा उमन कुछ और ना डालत रहे, मसाला जो पीस के बनाते थे ना, और ज्यादा कुछ नहीं डाले, जो ईसाई जितना आ गया है सब है ये सब आ गया डालने के लिए, वो नहीं, बाकी उन लोग के हाथ के खाना इतना स्वादिष्ट होते थे, तो वही सीख सीख करके हम लोग कुछ लेके चल आईली है कि उसे हम लोग बनाए ला, बाकी जो है बोली ला कि लड़कन जाए के सीख लो बैठो, जो पहले के बात है।
2: शीला जी आप सही कहते हैं, मैं ये बोली कि आप सही कहते हैं, क्योंकि हम जब अपने दोस्तों के साथ भी जब बैठती हूँ ना सहेली लोग के साथ, तो वो अक्सर यही बात करते कि मेरे को बहुत पछतावा है, मेरी माँ कहती थी, मेरी आजी कहती थी सीख लो, अगर आज मैं सीख ली होती तो आज बहुत काम निकलता, ऐसे सब कहते हैं। अब पछतावा है, बाद में पछतावा होता है,
1: वो सही बात। देखो हम अपने की जो बोली ना, मेरे आजी जो थी तो आजी जानते थे कि मैं कंदोरों को बैठती थी ना सूरीनाम में, तो जब कोई जाती थी उनके पास मेरी सबसे सनीसा पठाती थी, मैं जाती थी आजी के पास, बाकी रोज नहीं जा पाती ना, पर सनीसा शीला के बलाई दियो, तो जाए तब आजी का भय, तो आजी धीरे से कनवा में बोले पैसवा कब बटेगा। और खाना जो बनाते थे ना, खाना बना करके भी अगोटे पैक के अगोटे थे ना, तो हम लोग जाए तो पूछी आजी एक एक कैसे बने लो,
2: हाँ।
1: तो जा आजी बतावे तो मोरी में धर ले, तो घर पर जब जाए तो हम भी उही तरीका से हम भी ट्राई करते, हम ही अपने बना देते,
2: तो उसने
1: वैसे ही बने बने, हाँ। ऐसे सीख गया, बहुत कुछ सीखा है, और जब पुरन के बैठी ला हम लोग, तो कभी कभी हम लोग के भी कोक एक्टिविटी रहे ना पकाने के लिए, तो वही पुराना खाना हम पकाए सबके खातिर, तो बहुत ये लोग के इतना खुश हो गए, तो सब पूछे भी कि कहाँ से ये सीखले है, तो देखो भी कि सीख लोगो कुछ आजी आजा से, माए बाप से सीख लोगो, तो ओके अपने काम में लाओ, कर सकते हैं भी,
0: क्योंकि एक ना एक दिन जब गलती से एक चीज जो जिसमें कुछ ना करने से, वक्त कहते हैं वक्त बगैर कुछ करे आगे बढ़ते जाता है, और एक न एक दिन दांत जब गिरने लगेगा, आंख से कम देखने लगेंगे, और पैरों जो अपने मनमानी करने लगेगा, तो पछतावा ना हो। तो ये तीन घंटियां जो जीवन में बचते रहते हैं, तो आपको जो है अपने ग्रोथ ऑर्डर्स कहते हैं ना, नई दवाओं में ग्रोथ ऑर्डर्स ऑर्डर्स के लिए तो खूब मस्त। और कोई कोई कहते हैं कि भाई वह बन दृक लेफ एंड वह बन दृक द केंद्र मुतना द फुटबॉल एंड द, ये कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो केंद्र ना द फुटबॉल तो बाद में जब मुसीबत पड़ते हैं बच्चों को पितृ दोष लगते हैं और पितृ दोष ऐसा चीज है जो कितना दिन छोड़ेगा नहीं,
2: कई पीढ़ी तक जाए
0: कहीं कहीं पर विवाह नहीं हो पा रहा तो कहीं कहीं घर में बेटा बेटी और जाकर के दूसरा रास्ता पे चल जाता है और ऐसा ऐसा चीज जो पीने लगते हैं, ये सब पितर के और सेवा में कुछ न कुछ पितर ऋण ऋषि ऋण और देव ऋण का और जो बोया हुआ फल है। तो आप समय निकालिए, समय निकाल करके और इन दिनों में और ना इन दिनों में सिर्फ मार्क दैट फॉर योर ऑर्डर्स। शांता जी जो कोई और गीत को रखने वाले हैं हम, शीला जी अगर कुछ और कहने वाले हैं
1: जो यही मैं कह सकता हूँ कि देखो माता पिता के इतना प्यार देवो दुलार देवो वही वही सबके कमी है का उनके बात सुनो क्या उन्हों मानता है तनी थोड़ा के बैठ के सुन ले वो तो उन के भी तसल्ली हो जाते हैं। देखो हम लोग भी हम पुरानियन के साथ काम करती हूँ तो जो उन लोग के तनी से प्यार दे दो दुलार दे दो तो उन लोग इतना खुश हो जाते हैं। उन लोग के खाली पूछ लो कैसे बाटो का भोजन कर लो भोजन कि ना भोजन कर लो कैसे बाटो कैसे आप सो सुत लो बाटो उतने सब हाँ खाली आंदा खाली वही उतने दे दे उनके तो भी ठीक है। जा करके एक बार हफ्ते में देख लो क्या कमी उनके घर में कुछ किन के ले जा करके दे दो उन भोजन पकाते हैं क्या कमी है या तार कर लो ज्यादा हाँ ईसाई तो कितना मोबाइल है जब देखिला सब मोबाइल लेके आवे है ना तो हम लोग सोचे इस सब तो यौगर से आगे निकल गए ले
0: हाँ और ना ओसन मोबाइल सिला जी स्मार्टफोन भी उनके बोल रहे हैं स्मार्टफोन फेसबुक है और
1: इंस्टाग्राम है
0: सब कुछ है और
1: हमें समय ना लगे है उतना सब ताकि उन लोग के जितने अच्छा उन लोग के और ज्यादा समय है ना
0: बिल्कुल
1: बाकी ठीक है कि उतना है उन लोग के भी जो बहुत क्या उनमें जब देखी ला कि कैसे सब उनमें अपना वक्त निकालता है भी कुछ है ताक करके कि भगवान के कुछ उम्र होते हैं ना कृष्णा के कुछ होते हैं सभी कुछ ताक के सब अपन जो बहला लेता है।
0: सुंदर सा संदेश और शीला जी जो रखे आज। शांता जी छोटा सा म्यूजिक कुछ सुनाने वाले हो आप
2: जी

0: ये सुंदर सा गीत जो शांता जी जो चून करके रखे हुए कि बुढ़ापा किसने देखा है शांता जी।
1: हाँ, और कहते हैं जो भजन कहते कि भजन करो भरी जवानी में, भजन ये नहीं है कि आप माला जाप करो सिर्फ और जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, नहीं, भजन ये है कि सेवा करना, अपने एक दूसरे के सेवा करना, दो बोली बोलना प्रेम से, वो भी एक भजन है।
2: सही बात शांता जी।
1: हाँ, घर में खाना बनाओ पकाओ वो भी एक भजन के तरीका है।
2: सही बात, खाना बनाओ भजन करते जाओ। हाँ। और वो खाना एक तरह से
1: प्रसाद
2: बन जाता है, और जितना आप भजन करोगे उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा।
1: सही बात भी। हाँ, भी कहते हैं कि भजन करो भरी जनवानी में कि बुढ़ापा किसने देखा, कि कान से बहरे हो जाओगे कभी लुंगड़ा हो जाओगे तो सोचो हाथ कत मा खदान ना। हाँ, ऐसा तरह
0: तो पैसा कमाते रह गए। अब देखा जाए शीला जी, हम औद्र तहस में जाओ तब बचपन में उन लोगों ने अपन लड़कन के पोस पाल के बड़का कर, इस बोले 10 लड़कन को पोस पाल के बड़का कर देते हैं एक माता पर, एक माता के सेवा करने के लिए 10 लड़कन के लड़कन भी 20-25 हो जावे चाहे पर ना हो पावे। और उसमें वो शक्ति था कि देखा जाए कि हम लोग का कोई त्योहार, शांता जी कुछ कहने वाला था।
1: इसीलिए मेरी ख्याल से वृद्धा आश्रम बना है, क्योंकि बच्चे जो है वो सब आगे देखे पीछे ना मांगे देखे, हमारे माँ बाप भी आगे देखते रहे और आगे देखते देखते, और जो पाछे वाला पीछे रह जाता है, और जो पीछे रह जाता है जो उस जो हेल खुरपन जो है पीछे रह जाए तो उस सब फर इंसान होए लगे है बस खेन अर्थ वे नेक्स्ट जवेत से ओगने वात से मुत दूर एंड एक डेंक दे डेंक एक या दैट द रीड इज दैट देयर न बयार द हाउस ऑर्डर न हाउस फॉर ऑर्डर से खमा dat ze bij elkaar kunnen komen, hun leed kunnen delen, hun ervaringen van vroeger kunnen delen, met elkaar kunnen praten, communiceren, zodat ze toch het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn.
3: Wo sahi ba jo bole hai Santa Didi ji, jo dekho jab unogan isai jo bimari bhi aayi gayi hai, demensi bolte hai na, कि इसलिए उन लोगन आते हैं या ऐसे घर में बुजुर्ग घर में रहने के लिए कि घर पर बच्चे लोग सेवा ना कर पाएगा ऐसे माँ बाप के कि कर सके हैगा बाकी उनके स्पेशल सेवा चाहिए कोई के चाहेगा एक बार फिर घर में धरे के और लड़कन ईसाई लड़कन सब कोई काम करे हैगा तो जब सब कोई काम करे हैगा ओके भी घर में छोड़ के जाइए तो अकेले भी दिन भर अकेले रहे तो इसलिए वो घर जो है बना है सबके लिए कि जा ले जा करके सब भी उमन धर सकते बाकी धर सकते हैं काहे खातिर ना कोई बोले हमें तो शर्म लगे अपने माए बाप के ले जा करके वहाँ धरा, हम बोली नहीं ये शर्म के बात नहीं है, आप घर पर उनके सेवा नहीं कर पाते हैगा जो दिमाग
0: जो चाहिए
3: से, दिमाग से जो तनी कम हो गया है ना जो चाहिए उन्हें ही दे पाएगा बाकी शर्म कब आएगा कि अपने माँ बाप के लिए जा करके वहाँ धर दियो इसन घर में एक वृक्ष आश्रम में जो हम लोग के हैगा जन्ना जो उनके देखे तब तो वो शर्म के बात है बाकी जो धरे हैगा वो शर्म ना है वो लोग मजबूरी है
1: मतलब मैं से दीदार वैर कर
3: जैसे आपने बोला।
1: हाँ,
3: जैसे आपने बोला है कि अपने लिफ्टेट खनोत से है अपने अपने जो उम्र के बराबरी हैगा उनके साथ वो बैठ करके बात कर सकते हैगा वो सही बाजोन बोले है।
1: हाँ,
3: और वो ठीक हैगा घर पर बैठिए बच्चों के साथ भी सब कुछ ना शेयर कर पाएगा और वहाँ जो है तो अपने सब कुछ आता है मुड़ी में ना बात करने के लिए।
1: हाँ, और बहुत ज्यादा घर पे रहोगे एक बार जो दू दफे तीन दफे हराल कर तब बच्चे बोलेगा चुप रहो मान एक भाव बतिया बोले
0: अरे शांता जी हिसाब से क्यों ना न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं और कमर्शियल की ओर तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं
3: तो वैसे रहेगा तो बोलते हैं कि वो उन लोग के कैनस नहीं रहेगा
1: कैनस ना रहा तक
3: कि कैसे पहले हम लोग ना जाने थी दमयंती का है
0: yeah.
3: अब जब हम लोग जान गए अब तो ढेर प्रचार बा तो जब ऐसे होवे है कोई के तो बच्चन के चाहिए गूगल करके देखे कि क्यों मेरे बाप माता पिता इतना हैर हाल करते क्यों ऐसे बोलता है क्यों तो उन जब देख लेगा ना तो उन लोग दूसरा व्यवहार दूसरा का व्यवहार करेगा माता पिता से
1: जी. तो यहाँ तक था ये प्रोग्राम इस वक्त के लिए.

0: सुनवालो कार्यक्रम जो आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया जाए, तो अनुराधा जी जो भारत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपना संदेश रखने वाला है कि जीवन में अकेलापन, जीवन में अकेलापन के अंतर्गत में अनुराधा जी क्या सुनाने वाले हैं, तो हमें अनुराधा जी आपको हम सेंडिंग में ला रहे हैं, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आप अपना संदेश को सुना सकते हैं।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और आपका जीवन स्वस्थ चल रहा होगा, आप अच्छा भोजन खाते होंगे और अपने परिवार जनों के साथ वक्त व्यतीत करते होंगे। देखिए, जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार बनाकर रखें, अपने परिवार वालों से संबंध अच्छे रखें, सबसे प्रेम से और रहें और अच्छे बोलें एक दूसरे से। देखिए, हमारा सभी का जीवन एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारे पास जो जीवन में हमें नहीं पता कितना लंबा हो गया, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जितना भी जीवन हमारे पास हम जीते हैं, हमें होना चाहिए कि हम उसे भरपूर अच्छे तरह खुश होकर बिताएं। संजय जी, आज देखिए हर इंसान के पास, मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारा जो जीवन है वो अलग अलग किस्म के हम तरीके से व्यतीत करते हैं। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। भले ही हम सब मनुष्य हैं पर हम सब अपना जीवन अलग अलग ढंग से बिताते हैं। देखिए, हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग रहने के तौर तरीके होते हैं और परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, तो हर इंसान का जीवन हर एक दूसरे से अलग होता है। भले ही हर इंसान का परिवार होता है, उसे जीवन में रहने के लिए पैसे कमाने होते हैं, उसको अपने हर चीज़ करनी होती है, पैसे कमा कर अपना पेट भी भरना है, तो काम भी करना है और परिवार में माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बच्चे सब होते हैं। पर देखिए, सब परिवार होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक समय आता है कि हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और या तो उनकी शादी हो गई है या वो कहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग रह रहे हैं या साथ भी रह रहे हैं, आप अपने हम सफ़र के साथ जीवन बिता रहे हैं या कभी कभी हमारा हम सफ़र जो होता है वो हमें बीच राह में अकेले भी छोड़ कर चल जाते हैं, तो हम अकेले रह जाते हैं। हमारे माता पिता जब तक साथ होते हैं तो है, नहीं तो हम अकेले भी अपना जीवन हमें व्यतीत करना पड़ता है, बच्चे भी हमें एक समय पर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि हम बहुत बार हमें एक अकेलापन सा लगने लगता है कि जीवन में हम बड़ा एक अकेलापन ऐसे लगता है कि हम जीवन में इस आए हैं, हम चाहते हैं हमको सब प्यार करें, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि हर इंसान को अकेलापन लगता है। ये जो आज मैं ऐसी इस पर बात करना चाहूँगी, इस विषय पर, क्योंकि ये विषय जो ऐसा है, हर इंसान कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है अपने जीवन में, और वो ये बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी हम आपस में एक दूसरे से लोगों से बात भी नहीं करते हैं, भले ही आप अपने दोस्तों के साथ हो, पर आप हर से हंसी खुशी बात कर रहे हैं, पर जब आप घर वापस आते हैं तो आपको एक अकेलापन महसूस होता है। और ये बहुत बार ये इंसान, हम लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे से ये बात नहीं करते और अंदर ही अंदर इसको हम अंदर महसूस करते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर काफ़ी चर्चा, मतलब जो चर्चित ये विषय इसलिए है क्योंकि ये आजकल का आजकल हर इंसान इससे जूझ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। और संजय जी, आगे बढ़ते हैं तो एक गीत हो जाए, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगी।
0: जरूर जरूर अनुराधा जी, एक गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। नहीं शांता जी, क्यों ना एक इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा से चला देते, क्योंकि संदेश ज्यादा है
2: जी।
0: हाँ, समय के कमताई और काम के दबाव, तो थोड़ा से गीत को यानी इंस्ट्रूमेंटल चला देते हैं अनुराधा जी।

तो आगे बात लेकर चलते हैं आगे। हम यहाँ अकेले हैं, कभी कभी जीवन के किसी शांत क्षण में जब चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है, तब भीतर से हमें कई बार एक धीमी सी आवाज हमारे अंदर उठती है और वो कहती है हम यहाँ अकेले हैं। तो ये जो अकेलापन लोगों के ना होने से नहीं आता, ये नहीं है कि हमें अकेलापन तभी होता है जब हम अकेले हैं। कई बार घर में घर भरा होता है परिवारजनों से, घर में बच्चे हैं, आपका आपके परिवार में आपकी पति पत्नी आप दोनों में से जो भी हो है मौजूद हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते मौजूद होते हैं, हाँ। पर कितना भी कुछ हो जाता है, कितने लोग हैं घर में, तब भी आपको आप कहते हैं मैं अकेला महसूस करता हूँ, तो और मैं मेरे को अकेलापन सा लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है, देखिए बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है जैसे हम मैंने कहा कि आप अकेले रह रहे हो, ऐसा होता है लोग अकेले रहते हैं घरों में अकेले रहते हैं, तब तो हम मान सकते हैं कि आप अकेले हैं। पर अकेला होना अकेलापन ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आप अकेले रहकर भी खुश हो सकते हैं, अपने जीवन में बहुत खुश हो सकते हैं और पूरा पूर्ण महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अकेलापन वो है जब आप लोगों से भरपूर हैं, आपके आसपास लोग हैं, तब भी आपके मन में जो विचार होता है या आपको जो आपकी जो जो आपको फील होता है, जो आपके मन में चल रहा होता है कि मुझे एक अकेलापन सा महसूस होता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको फोन पर संदेश भी आते रहते हैं, ये नहीं कि लोग आपसे संपर्क नहीं करते, लोग आपको आपसे बातें भी करते हैं, फोन मिलाते हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं और लोग आपके हालचाल भी पूछते रहते हैं, फिर भी मन के किसी कोने में एक खाली जगह बनी रहती है, एक ऐसी जगह जहां हमारी जैसे कहते हैं ना अनकही बातें, हमारे डर, हमारी थकान, हमारी पीड़ा चुपचाप बैठी रहती है। तो वो ऐसी जगह होती है जैसे जो वो हमारे अंदर ही दिल के अंदर रहती है, हम किसी को दिखाते नहीं हैं, ना ही हम उसके बारे में किसी से हम बात करते हैं, और वो ऐसी पीड़ा होती है अंदर इंसान के कि वो उससे बस उसको अजीब सा

0: दुख के आप दुख आप कोई पीड़ा हो रखी, आपको दुख से आपको गुजरना पड़ा हो, तो इंसान को थोड़ा सा अकेलापन लगता है। पर हम ये जो अकेलेपन की बात कर रहे हैं वो ऐसा अकेलापन है जब आपके आसपास सब परिवार वाले भी होते हैं, आपके दोस्त जन भी हैं, आप दफ्तर भी जा रहे हैं, या आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आपको एक अंदर सा खोखलापन आपके अंदर महसूस होता है, और एक आपको लगता है कि जैसे जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं पर ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है, हम वहां हंस रहे हैं खुश हो रहे हैं पर अंदर ही अंदर हम बहुत बार दुख महसूस करते हैं। और ये जो परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं ये हम कभी कभी हम किसी से बात भी नहीं करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हम ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो ये बहुत एक गहरी समस्या है जिसके बारे में बहुत जरूरी है कि हम उस समस्या को हम उसका समाधान ढूंढे हैं, उसके बारे में हम बातचीत करें, चर्चा करें कि ये अकेलापन क्या है। और क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि इंसान को हम देखिए हम हर इंसान का जीवन अलग होता है पर हमें ये अकेलापन जो है वो हमें ऐसे में परिस्थिति से नहीं गुजरना चाहिए जिसमें हम इसमें हम फंस कर रह जाएं, क्योंकि ये बड़ा दुख पहुंचाने वाली परिस्थिति होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें और अच्छा महसूस करें। तो ये आगे मैं बात करती हूँ इसके बारे में। संजय जी एक गीत हो जाए अच्छा सा जिससे कि जिनको ये अकेलेपन के से गुजर रहे हैं उनको भी थोड़ा पल भर की खुशी मिल जाए। चलिए आगे एक गीत हो जाए फिर आगे बात करते हैं।
1: तो दोस्तों सुनने वालों हम इंस्ट्रूमेंटल की ओर बढ़ रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटल जो हम चलाने वाले हैं क्योंकि

0: अभी हम सब सुने, जो अनुराधा जी अभी और भी संदेश रखने वाले हैं, पर शीला जी इस पे अब देखा जाए कि हमारे औदर के लिए काफ़ी चीज़ें जो बन चुके हैं ना, अपंग ढेर सारे हैं जो यानी कि जब मन करे तो रोज ही जा सकता है कहीं ना कहीं।
1: वो सही बात, इसलिए यहाँ पर जो है इसे होलैंड में इसे बहुत कुछ खोल गया है ना, कि जहाँ जा करके हम लोग के बुजुर्ग लोग पुरानिये जा करके अपना दिन बिता सकते हैं, जैसे कि या जैसे ब्यूर्थ हाउस पहले रहा ना, पहले ब्यूर्थ हाउस अब वहाँ पर बन गया कि सत्संग होवे लगल बा, कि पुरानियन आवे वहाँ बैठे, योगा है जाने के लिए, बहुत कुछ तरीका है कि जा करके अपना दिन सब बिता सकते हैं। और इनमें बच्चों के भी चाहिएगा उन लोग के सपोर्ट करे के कि माता पिता लोग निकसे घर से तनी से ले जा करके उन लोगन पहुँचा देवे, माता पिता के ले लेवे। इसे तो टैक्सी कितना यहाँ पर कितना

0: सहारा हो गया टैक्सी के ना कि अपना ले सकते हैं वो ला करके घर पर तो के है लेकर के ले जाएगा जहाँ तो के काम हैगा वहाँ उतारेगा वहाँ से उतार करके ला कर फिर घर पर पहुँचा देता है। कि इनमें यही मेरा संदेश है कि निकलो माता पिताओ जाओ बाहर बाहर देखो कि अपना दिन बिताओ अपना लोगन अपना वक्त जो हैगा ना वक्त हम लोग के जैसे पंडित जी बोलते हैं कि वक्त नहीं अगोता है वो सही हैगा कि हम लोग जा करके अपना टाइम वहाँ पर कुछ ना कुछ से जोड़ा रहेगा और भी कि हम लोगन जब जितने बहिरे निकलियो उतना जो बहलीगा आप लोग के अकेलापन जो महसूस करता है घर पर। अब हम लोग के अनुराधा जी कितना बताया कितना अच्छी से जो अकेलापन है ना अकेलापन बहुत कठिन है इसलिए कि दर दर पर जरूर कुछ ना कुछ हो गया समय बिताने के लिए कि अकेलापन तनी से दूर होवे कि महसूस ना होवे कि आप अकेलो बाटो।
1: तो दोस्तों सुनने वालों और जिस प्रकार से शीला जी कहते हैं और अनुराधा जी जो दूसरा साइड एकदम भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं तो अनुराधा जी और भी संदेश हम लोग के लिए रखने वाले हैं आप अपना संदेश को रख सकते हैं।
2: और समझा जाए कि ऐसे अकेलेपन में ये क्या अकेलापन क्या है ये अकेलापन किसको है। देखिए जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं किसी के लिए माता पिता बनते हैं किसी के लिए जीवन साथी किसी के लिए मित्र किसी के लिए सहारा। तो हम सबकी जो हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं तो हर इंसान की जैसे कहते हैं ना कि हर जीवन में उसके अलग अलग परिस्थितियां हैं और उसके अलग अलग रिश्ते हैं जो सबके साथ उसको निभाना पड़ता है। हम सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं हम सभी रखते हैं और सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सहारा बने हमने दूसरों की लिए हम वहाँ थे जब हमारे माता पिता थे हम उनके अगर बच्चे थे तो हमने उनको जरूरत पड़ी हमने उनको सहारा दिया हमारे बच्चे थे अगर हम उनके माँ बाप हैं तो हमने बच्चों को जब उनको कुछ सहारे की जरूरत थी तो हमने उनकी मदद करी उनके सहारा जब या हम किसी के पति हैं या पत्नी हैं एक दूसरे की हमने जब करा तो हर जगह जब जिसकी जैसी आवश्यकता थी वहां हम ने दूसरे को सहारा दिया चाहे भले ही वो दोस्त है घर में किसी को भी। तो हमने हमेशा सहारा तो बने पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें खुद स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है तब हमारे पास केवल हमारी खामोशी रह जाती है। तो ऐसा भी होता है कि जब हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई हमने जीवन भर दूसरों के लिए करा आज ऐसा समय आ गया कि हमें खुद किसी के सहारे की जरूरत है। तो ऐसे में जब ऐसा एहसास होता है तब हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है क्योंकि हम वो व्यक्त नहीं कर पाते किसी को कि भाई आज ऐसा भी दिन आ गया है कि आज हमारे मन में ऐसा भी संदेह है ऐसा भी हमारा मन में चल रहा है विचार कि आज मुझे एक अकेला। अपन लग रहा है, मेरे को एक सहारे की जरूरत है। और ये बड़ा ये ऐसा नहीं कि ये आप ही एक हैं जिसके साथ है, ये अनेकों के साथ ऐसी स्थिति आती है। देखिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। आपको ये लगता है ये होगी, नहीं, ये नहीं है। हर इंसान को लगता है कि भाई अगर हमारे पास खाने को अच्छा है, हमारे पास कपड़े अच्छे पहनने को हैं और हमारे पास मकान है, तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और ये बस हम बहुत खुश हैं। पर ये हम गलत सोचते हैं। उसकी तो ये नहीं कि हमें खाली रोटी कपड़ा मकान ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या होती है, समझा जाना, जहाँ लोग हमें समझें, कोई दूसरा इंसान हमें समझे। ये जो बाहरी चीज होती है ना, खाना पीना और घर होना, पर सब कुछ है, कपड़ा सब है, आपका जीवन बड़ा आपका बहुत अच्छा, आपके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, पर ये कोई ये नहीं समझता कि इस सब का कोई अर्थ नहीं है अगर आपको कोई समझने वाला ना हो। तो सबसे बड़ी आवश्यकता हर मनुष्य की है कोई उसको समझने वाला हो। तो ये हर इंसान की सबसे बड़ी जो आवश्यकता उसी को कहते हैं कि कोई उसको समझ सके, उसकी दिल की गहराइयों को समझ सके, उसकी दिल की बात को समझ सके। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके। तो ऐसी ही इंसान को हम तलाशते रहते हैं और हमें हमेशा लगता है कि भाई ऐसा ना हो हमारे साथ, जब जो हमें नहीं समझ पाता है, तब हम अकेलापन का हमें एहसास होने लगता है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी गहरी सच्चाई है कि आप कितने भी धनी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, तो कोई जरूरी नहीं आप बहुत खुश हैं। उस इंसान को भी अकेलापन महसूस हो सकता है। और भले ही एक इंसान गरीब हो, हम सोचें भाई गरीब है, उसको अपने दुख है, पर इसमें गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अकेलेपन का एहसास उसको वो कभी कभी कभी ना कभी जीवन में उसको वो इससे गुजर सकता है। तो संजय जी, आगे बात बढ़ाते हैं और बात करेंगे इस विषय पर, क्यों ना एक और सुंदर सा आप अपने पिटारे से एक और गीत सुनाएं हमें।
1: अनुराधा जी, मैं तो पिटारा वाला तो शांता जी है और शांता जी पिटारा में भर के लाए हैं ढेर सारे गीतों, पर कहने के तात्पर्य ये है, हमारा कार्यक्रम थोड़ा लंबे है तो, और पनीर के पीछे बैठ गए हैं शीला जी, तो शीला जी क्या म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल्स थोड़ा से चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

आगे कहा, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके, कोई ऐसा जो वह यह ना पूछे कि तुम्हारी क्या समस्या है, बल्कि केवल इतना उससे प्यार से ये कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए, यही जो साथ है ना, इसी साथ हर इंसान यही साथ चाहता है एक साथी से, या जो भी उसके परिवार में है जो उसको समझ सके और उसे कह सके, मैं तुम्हारे साथ हूं। दुनिया में सबसे गहरा दुख अक्सर वह नहीं होता जो दिखाई देता है, सबसे गहरा दुख वह होता है जिससे होता है जो दिखाई देता है। मतलब हम सोचते ना कि भाई किसी को कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई तकलीफ है, तभी उसको दुख है। नहीं, वो दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना जो अंदरूनी, जो उसके अंदर जो दुख होता है वो सबसे बड़ी वो दुख होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, तो वही इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है। और यही जो दुख होता है ना, जिसको हम अकेलापन करते हैं, यही वो जो अकेलापन की स्थिति होती है, उसी में वो सबसे इंसान दुख से पीड़ित होता है, अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा इंसान का जो होता है ना, वो दुख होता है, और वो अकेले ही उसको उसको झेल रहा होता है, कि उसको ये नहीं पता कि भाई उसको बस एक इंसान की जरूरत है जो उसको समझ सके। और वह क्या होता है कि ऐसी जो बात होती है ना, हम किसी से कह नहीं पाते हैं बहुत बार, वह दर्द जो आंखों तक आकर लौट जाता है, वह आंसू जो किसी के सामने बह नहीं पाते, वह उम्मीद जो धीरे धीरे टूटती रहती है लेकिन जिसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। शायद इसी कारण हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। तो यही जो जो सबसे बड़ा जो इंसान का जो अकेलापन आता है ना, वो इसी से आता है, वो कभी जो वो बोल नहीं सकता किसी से। तो ये बहुत बड़ा हर इंसान के जीवन में आता है कहीं ना कभी, कभी ना कभी। हम अपने संघर्षों के साथ अकेले हैं, अपनी यादों के साथ अकेले हैं, अपने डर और अपने सपनों के साथ भी अकेले हैं। देखिए, इस सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। तो जहां पर हम सोचते हैं कि भाई हम अकेले हैं हर चीज में, पर एक अलग भी उसका जब है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें आसपास, चाहे हमारे परिवार वाले हो, हमारे दोस्त जन हो, हमारे सहकर्मी, हमारे जहां आप काम करते हो, दुनिया में हर कोई, कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई बोझ लिए चल रहा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई अधूरी कहानी है, कोई अनकहा दुख है। देखिए, कोई ऐसी कमी है जिसे वह शब्द नहीं दे पाता है। तो तब समझ में आता है कि हमारा अकेलापन केवल हमारा नहीं है, यह मनुष्य होने की साझा नियति है। ये हर मनुष्य को कभी ना कभी ये इस दुविधा से, इस परिस्थिति से के से गुजरना पड़ता है। तो चलें आगे और भी हम बात करेंगे, और आशा करते हैं कि देखिए अकेलापन है, पर इससे हम उभर कर क्या हम निकल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि बस हम अकेले, अगर हमें ये महसूस होता अकेलापन है, क्या हम जीवन भर ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा? क्या आगे कोई इसमें कोई हम कुछ कर सकते हैं, हम इसमें इससे निकल सकते हैं?
चलिए पता लगाएंगे आगे, उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा एक और गीत हो जाए। संजय जी आइए, एक गीत सुना जाए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं।

0: अकेलेपन के बारे में। तो देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि हम हर इंसान एक साथी की खोज में है, जो उसको उसको लगे कि जो उसे समझ सके। हम सब अपने अपने दुखों के साथ चलते हुए एक दूसरे की तलाश में हैं। हम सब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं होते हैं जो हमारे भीतर तक पहुंच सके। और देखिए, जीवन भी ना शायद इसी खोज का नाम है। जीवन भर हमारा बीत जाता है और ये हमारा नजरिया भी होता है बहुत बार कि कभी कभी जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं वो हमारे सामने है, पर हम उसको इतना उसका हम उसका महत्व नहीं समझते हैं। उस इंसान के बारे उसके बारे में या उस चीज को इतना महत्व नहीं देते हैं। और हम ऐसी ही कुछ अपना तलाश कर रहे होते हैं या किसी की चीज खोज रहे होते हैं जिससे कि बस हमारा अकेलापन दूर हो जाए। किसी ऐसे हाथ की खोज में हम होते हैं जो कठिन समय में हमारा हाथ थाम ले। तो हमें ये लगता है कि भाई हम ऐसा हमें भाई कोई समझने वाला हो या हमारा हाथ थाम ले ऐसी ऐसा व्यक्ति जिससे कि हमारा जीवन में अकेलापन जो हम जिससे गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाए। किसी ऐसी आवाज की खोज में होते हैं जो टूटते हुए मन को यह विश्वास दिला सके कि सब ठीक हो जाएगा। तो हर इंसान, हर मनुष्य का हृदय क्या होता है ना, वो चाहता है प्यार, चाहता है प्रेम, चाहता है। तो किसी हम ऐसे साथ की खोज में लगे रहते हैं जहां हमें अपने आंसू छुपाने ना पड़े। जिस इंसान के साथ हम ऐसा लगता है कि जहां हमें अपना पंसा लगे, हमें किसी के साथ ऐसा अपनापन लगे कि हम अपने दुख की बात, हम अपना सब कुछ इस इंसान के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ हम बांट सके। और जब हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा अकेलापन भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हर मनुष्य जो है ना वो बहुत बार, देखिए ऐसी जीवन में आप जब आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आपकी जीवन शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी कट रही हो सकती है, आप खुश होते हैं तब आपको ऐसा साथी मिला है जहाँ जो आपको समझता है। पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के साथ हैं पर वो हमें समझ नहीं सकता है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहा है। पर कभी कभी ये भी हमें सोचना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, पर क्या वो, देखिए वही बात, दूसरा आपका जो साथी है उसको भी ये लग सकता है कि ये इंसान हमसे दूर रहता है, हमें समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके जीवन में आपका साथी हो आप उसको भी समझने की कोशिश करें। और जहां आप अपना हाथ बढ़ाएंगे दूसरे को समझने में, तो दूसरा इंसान भी अपना हाथ आपको समझने में की कोशिश में करेगा। और ऐसे ही ये बहुत बार होता है कि हम अपनी जो मानसिक रूप से हम जब ऐसे सोचने लगते हैं कि हमें कोई नहीं समझता, हमारा दुख सुख नहीं समझता है, तो हम वो अकेलापन की हमें अनुभूति होने लगती है। पर आप इसी, देखिए हर चीज़ ये तो हमारे दिमाग से होती है, इसी दिमाग को अगर हम ये कहें, आप अगर नकारात्मक ना सोचें और उस सोच को हम बदल कर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग करें कि जो हमारे साथ परिवार जने हैं, हम उनसे थोड़ा खुलकर बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, अपने बच्चों के साथ हम अपना थोड़ा समय दें, अपने माता पिता हैं, आपके आपके जो जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो दोस्त हैं आपके, हो सकता है आप अकेले रहें, आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अकेला जीवन व्यतीत करने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, अकेलापन का महसूस करें, आप लोगों से दोस्ती करें, अपने अपने जैसे लोगों से जो आपको लगता है जो आपकी बात समझ सकते हैं, और जो आपको आप जो आपके दुखों के दुख के समय आपको सहारा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप मिले जुले हैं, आपस में परिवार में भाई बहन हो, रिश्तेदार हैं, उन सब से एक एक अच्छा सा एक माहौल बनाएं, जिससे कि जहां पर आप हंस उनके साथ दो पल बिताएं, पर हंसता हुआ जीवन जैसे कहते हैं ना, खुश मिजाज रहकर जीवन बिताएं, तो काफी हद तक आप जब अपने दिल की बात भी कोशिश करेंगे किसी को व्यक्त करने की, तो आपको आपका मन हल्का हो लगेगा, और काफी हद तक आपको अकेलापन का की कमी आपको महसूस नहीं होगी। और ये हमें भगवान, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम अकेलापन भी महसूस करते हैं, तो हमें भगवान पूजा पाठ में सहारा लेना चाहिए है, आप ईश्वर को याद करें, अपनी सोच को सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंसान का जीवन को बदल सकती है। तो ये सब अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों से मिले जुले, अपने मन की बात अंदर दिल में ना दबाएं, अंदर ही अंदर उसको ना, जितना भी कठिन क्यों ना हो आप किसी से बात करें, कभी बहुत आपको किसी से नहीं कर सकते तो आप कोई डॉक्टर या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से बात करें, पर बात जरूर करें, अपने दिल की बात दूसरे को जरूर बताएं, इससे आपका आधा जो अंदर दिल की बात है किसी को व्यक्त करने से आपका दिल हल्का होएगा, और ये एक जो अकेलापन का जो जो होता है, आप बाहर घूमें फिरें, लोगों से मिलें, जो आपको पसंद है, आपको क्या शौक है, बाहर खाएं पिएं, घूमें फिरें, जो आपके शौक हैं उनको आप पूरा करिए, जो उसमें किसी को संगीत का, किसी को नृत्य का, डांस का, पेंटिंग का, बाजा बजाने का, गाना गाने का, जो आपके शौक हैं, किसी को लिखने का शौक है, और किसी को पिक्चर देखने का या कोई भी किताब पढ़ने का जो शौक है आप पूरा करिए, और जब जो शौक पूरा करेंगे तो उसमें आपको एक खुशी का एहसास होगा। तो ये अकेलापन की जो आपको जो आपका जो विचार है, इसमें ये बहुत सहायता करेगा कि आप आपकी सोच बदलने में आपको सहारा देगा, और आपकी सकारात्मक सोच जहाँ होने लगेगी तो आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, और खुश मिजाज आप रहने लगेंगे, आपको एक खुशी महसूस होगी। तो ये ये जो एक तरीका है, इससे इंसान अपने अकेलेपन से निकलने की कोशिश कर सकता है, और ये कोशिश में रह सकता है कि अगर हम चाहें तो इससे हमें गुजरना ना पड़े। हर इंसान चाहेगा कि ऐसी स्थिति, अकेलेपन से हमें स्थिति से गुजरना पड़े ना पड़े, तो यह मुमकिन है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जीवन से अपनी नकारात्मक सोच को, नेगेटिव थिंकिंग को हटाएं, और थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखें और पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना अपने जीवन में लाएं, तो हर चीज आप देखेंगे आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा, हर खुशी का आपको एहसास होने लगेगा। और मैं चाहूंगी आप सब ये कोशिश जरूर करें, खुश रहें और सबको आसपास भी सबको खुश रखें, यही मेरी कामना है। चलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं ये आज का ये अंत करना चाहूंगी विषय। और संजय जी चलिए एक बड़ा प्यारा सा सुंदर से एक और गीत हो जाए।
1: अनुराधा जी बड़ा सुंदर संदेश आपने

0: सुनने वालों, आज के विषय जो रखा गया और पितृपक्ष अंतर्गत जो संदेश को रखा गया, जिसमें काफी संदेश जो अनुराधा जी ने रखे ना शीला जी,
1: जी
0: तो इस संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जिसमें हम लोग पुरखों और अपने औदर को अंतर्गत में बातचीत किया, और यही आशा लेकर कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसे लेकर के और अपने औदरों के साथ कुछ सुनाने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ इस
1: हाँ, वो जीवन में उतारना है उनको, है तनी से अपने औदर की खातिर कुछ ये दिन बिताना है भी, ले जाओ उनको बाहर और देखना कि अगर आसपास में कहीं नगिश में भी कुछ हो कि जो अपन दिन बिता सकते हैं, इतना हम लोग के दाह आक्तिफिताई तबा खुल गया है, चारों बगल खुलल है गा है, जहाँ जहाँ उनके अच्छा लगे वहाँ ले जा करके जरूर उनके एक दिन बिता करके वो चला आवे अपना।
0: दोस्तों, तो समय पे हमें ध्यान देते हुए हम वही गीत की ओर बढ़ने वाले हैं, और वो गीत का बोल जो लागी छूटे ना है, तो लागी छूटे ना के ओर हम बढ़ने से पहले ये क्या कहते हैं,

जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है और जो कुछ भी मैंने पाया वह आपकी मेहरबानी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: Vertrouw op je weg. Vertrouw op je weg en blijf altijd vooruit gaan. Wat kijkt hij? Ki chalne ka naam zindagi hai bhaiya. Chalte roho, aage kadam badhate roho. Baithe roho te dimag dhaurate roho. Par aage kadam badhate roho. यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
1: अच्छा, यहाँ से भी यही तक मेरे प्रोग्राम भी था सबके साथ। धन्यवाद हो संजय, पंडित संजय जी, शांता दीदी, बबली दीदी, भाभी भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। यही मैं कहूँगा आपके, आप लोग से कि शुभ रात्रि होवे, मेरा प्यार भरा नमस्कार होवे आप लोग के, और फिर जरूर अगले बार मिलेगा।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए शांता खेमाई जी और श्रीमती शीला जी, बबली आसरा जी, मैं हूँ आपका सेवक संजय, और भारत से अनुराधा चंद्र जी जो अपना संदेश को रखे, यही आशा लेकर के कि कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुंचे होंगे। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार।

जीवन एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।